0: 1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना. मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
13: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
15: Aji sunte ho?
16: Aji nahi, AG sunte hain.
15: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday 9:45 a.m. only on Fun Asia Radio.
17: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
19: Bye-bye.

मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनीशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवैन। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनीशिया नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रेल सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। विद दैट चलिए उसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ अगले धमाकेदार गाने की तरफ। एंजॉय।

When Bollywood's best singers come together and sing together in one of the show, mic drop performance ही होता है. This was Shaila by Sunidhi Chauhan and Shreya Ghoshal. अगले ऐसे ही धमाकेदार गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों. उससे पहले बता दूं दैट फॉर 13 इयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी. नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड सेकंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल अंडर वन रूप. दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. विद दैट लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट अमेजिंग ट्रैक.

जी हाँ, इनका हुस्न तो तौबा तौबा है ही भाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विकी कौशल की और तृप्ति डिमरी की। दिस वन वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 17 मिनट्स पास्ट 7 और अच्छे अच्छे गाने चलते रहेंगे यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्व। अगले गाने की तरफ जाएंगे, उससे पहले बता दूं दैट अटेंशन टेक्सास बिजनेस ओनर्स लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन। ट्रस्ट केयर ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड energy plans. You can call them. The number to call is 844-428-2808 or visit their website, which is taraenergy.com today.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: ना सब और प्राइस
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
12: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
13: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके इस सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। और इसी तरीके से गानों की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर।

ब्यूटिफुल गाना टेकन फ्रॉम द मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। अगले ऐसे ही खूबसूरत गाने की तरफ जाएंगे, उससे पहले बता दूं दैट द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स यू विल कीप गोइंग बैक टू। ऑल दिस फॉर जस्ट $24.99 पर पर्सन। एंजॉय द बफे ऑन सैटरडे संडे फ्रॉम 12 PM to 3 PM. Take your family and friends and make your weekend delicious at the Flavored Lounge, which is located at 5855 Preston Road, Frisco. The Flavored Lounge, good food and great memories.

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 52 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड जेलस एंड हैव अ ब्यूटिफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड। बाय बाय एंड गुड नाइट।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं, और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो। वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

Welcome back, ladies and gentlemen. You're listening to the Sunday Pop Station with Prem Joshi. I do want to mention that this part of the show is brought to you by AG FinTax. It's one of the fastest growing tax firms in the United States. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They're trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com. Next, Ghana. अरे यार बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग हमको शांतनु ने रेकमेंड किया है. यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वाज इन जूनियर कॉलेज. हम बॉम्बे में उसको जूनियर कॉलेज बोलते हैं. आई नो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे स्टिल कॉल्ड इट स्कूल अंटिल 12th स्टैंडर्ड. बट यार जब मैं जूनियर कॉलेज में था ये गाना वायरल हो गया था यार. लाइक आप बरिस्ता में जाए, कैफे कॉफी डे में जाए, तभी तो स्टारबक्स नहीं हुआ करता था. बट यार दोज वर द प्लेसेस दैट वी यूज्ड टू हैंग आउट एज किड्स एंड यंग फोक्स. एंड दिस सॉन्ग वुड लाइक would be playing like twice or thrice in an hour. Kangana by Dr. Zeus. Here we go.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. So many amazing calls off the air. बहुत मजा आ रहा है. सभी लोग ने क्या amazing amazing request दी है. Dallas वासियों को एक छोटा सा काम क्या दे दिया, लोगों ने दिल पे ले लिया और एकदम से जबरदस्त request आने लग गए. Please keep him coming, ladies and gentlemen. 972-235-5555 is the studio का number. 972-235-5555 and of course DMs are also open. Instagram पे जाइए, Facebook पे जाइए, mention कीजिए प्रेम जोशी podcast, green color का logo दिख जाएगा, follow करिए और हमें message करिए आपके गाने का नाम, आपके artist का नाम, and we'll give you a shout out. I've had so many amazing conversations like मेरी wife का आज birthday है, आज हमारा anniversary है. यार कोई भी खुशखबरी हो, कोई भी आपकी happiness का moment हो, हम उसमें you know we want to be part of it. Okay, so let us know and we'll also give a shout out to your amazing wife, amazing life partner, whatever it is. We want to be part of all your happiness. Kyunki main manta hu, happiness, agar aap share karte ho na, to double, triple, chopple ho jati hai. So keep him coming. Of course, ye abhi humne gana, iconic gana suna, to humko Anika ji ne recommend kiya tha. She always recommends some amazing songs. So Anika ki tarah aapke paas bhi aise gane ho, let us know. 8 से लेकर 9 बजे तक हमारा बज रहा है पॉप सेगमेंट, जहां पे हम गाने बजाते हैं फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज. नेक्स्ट गाना मनीष हैज रेकमेंडेड छुई.

Oof, such an iconic song. Every millennial knows this song by heart. Yeah, all the 80s and the 90s kid know what a rage this song was. And of course, it's sung by Palash Sen and the band. वैसे मैं बैंड का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है यार, लेडीज एंड जेंटलमैन. आज हमारा मन बहुत उदार हो गया है बिकॉज ऑफ आर अमेजिंग स्पॉन्सर जो है फन पिज्जा किचन, जो मुझे बता देगा, जो हमने अभी जो ये गाना सुना, अगर आप ऑन एयर है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एक $10 का गिफ्ट कार्ड है हमारे पास जो हम एक लिसनर को देना चाहते हैं. अगर आप मुझे फटफट बता दे ये कौन से बैंड का सॉन्ग था. मायरी, वी जस्ट प्लेड दैट सॉन्ग इन द आइकॉनिक वॉइस ऑफ पलाश सेन. यू जस्ट हैव टू नेम द बैंड. सो जो सबसे पहले हमें कॉल करेगा उसे हम $10 का गिफ्ट कार्ड दे देंगे. 972-235-5555. 972-235-5555.

पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी कॉल्स। यार मैंने जितना हो सके कोशिश किया सबसे बात करने के लिए, बट ऑफकोर्स वी गॉट द फर्स्ट कॉलर एंड द आंसर, द राइट आंसर इन द 15th सेकेंड ऑलरेडी। जी हाँ, 15वें सेकंड पे हमारे कुमार साहब आ गए और छीन के ले गए इस बार के गिव अवे। बट नाराज मत होइए, डोंट गेट सैड, डोंट गेट मौन, बिकॉज वी डू दिस एवरी सिंगल weekend. Yeah, this is all because of our amazing sponsors that we are able to do this Bollywood fun quiz. 8 se leke 10 baje tak hota hai hamara show every Sunday on the airwaves of Fun Asia. Make sure you tune in every Sunday, and of course off air, follow us on Instagram and Facebook on Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. We do some amazing conversations from healthcare, immigration. अभी आप सबको पता ही है इमिग्रेशन में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो वी हैड सम अमेजिंग इमिग्रेशन अटर्नी ऑन आवर शो, वी हैव डन अ शो विद अ हेल्थ केयर आयुर्वेद डॉक्टर, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक, वी हैव डन सम वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशंस एज़ वेल। वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू आवर लाइव्स इन अमेरिका। सो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अस देयर ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, इट्स अ ग्रीन कलर लोगो। नेक्स्ट सॉन्ग मुझे रिकमेंड किया है अशोक जी ने, और उन्होंने बोला है यार ये गाना बजा दीजिए, एंड दिस सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट यार। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, फ्रॉम द आइकॉनिक वॉइस ऑफ लकी अली।

0: हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, पर कहीं जाएगा नहीं, आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक. नेक्स्ट सॉन्ग इज रेकमेंडेड बाय सफी, वो ब्रिंग दैट सॉन्ग आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Beta, 95% aaye?
6: हाँ मम्मी.
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

दिस वॉज सच अ फील गुड मूवी, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझसे दोस्ती करोगी. मैंने तो थिएटर में नहीं देखी थी, बट लास्ट टाइम आई नो आई थिंक दिस वॉज द मूवी, इट वॉज इन अर्ली 2000, सो इट्स बीन अ वाइल. ऋतिक रोशन, करीना कपूर एंड रानी मुखर्जी पे पिक्चराइज थी ये मूवी, बट इसके गाने सुपर डुपर हिट्स थे यार. ऑफकोर्स द मूवी डिडंट फ्लॉप, इट डिड वेल, बट द सॉन्ग्स, द म्यूजिक वॉज सो आइकॉनिक that is, it used to be played on TV, radio, everywhere, right? Very feel-good movie, Setmax पे जबी भी आती थी मैं ये देखता ही था यार. थोड़ा ये ऐसी मूवी है जो आप आपके फैमिली के साथ हमेशा एंजॉय कर सकते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग. दिस इज आर ब्लॉकबस्टर सेगमेंट जहाँ पे हम सुपर हिट गाने बजाते हैं, एंड इट कैन बी फ्रॉम द 90s, 2000 एंड इवन टुडे. आई कैन टेक 10 और 11 सॉन्ग्स बिफोर वी कॉल इट अ नाइट. So keep him coming. 972-235-5555 is the studio ka number. 972-235-5555. And you can follow us on socials. Instagram, Facebook, YouTube. Jahan pe bhi aapko aap time pass karte hain, hum wahan pe available hai. It's called Prem Joshi Podcast. PREMJOSHI Podcast. We talk to some amazing, amazing personalities coming from immigration, from dentist, healthcare, wealth, मैनेजमेंट, साइकाइट्रिस्ट, हम सभी के साथ बात करते हैं. देर आर यू नो दैट मेक एन इम्पॉर्टेंट मार्क इन आर लाइव्स व्हेन वी लिव इन अमेरिका. सो या मेक श्योर यू फॉलो अस, प्रेम जोशी पॉडकास्ट. नेक्स्ट गाना ऑफकोर्स फ्रॉम द आइकॉनिक मूवी कुछ कुछ होता है, लड़की बड़ी अनजानी है, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ में.

उफ, व्हाट एन आइकॉनिक सॉन्ग. आई थिंक इट्स अ कल्ट क्लासिक मूवी यार. कुछ कुछ होता है. आई डोंट थिंक एनी 90s एंड द 80s किड आउट देयर हैज नॉट सीन दिस मूवी यार. आई कुडंट ट्रस्ट एनीबॉडी हु इज सेइंग यार मैंने कुछ कुछ होता है नहीं देखी. कभी नहीं देखी, ऐसे कैसे हो सकता है यार. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे आइकॉनिक रिक्वेस्ट आ रहे हैं सभी से. एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू फोक्स आर डूइंग योर ग्रोसरी रन्स. आई मीन ऑफकोर्स सम ऑफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स होम आफ्टर डिनर, आफ्टर गेट टूगेदर, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर लिसनिंग टू अस. That's the main thing, and we are enjoying it. We are loving the conversations. So keep him coming. Uthao phone aur humse baat karo yaar. And if you have a certain story associated to that song, share it with us. Jaise hame abhi hamari bahut achi baat hui Ram se, who hails from Andhra Pradesh, and he and I were chatting about those golden days, and he recommended a song, Saif Ali ka gana. And jab bhi hum Saif Ali bole to ek iconic song, jo sabse pehla gana जो अपने जहन में आता है वो है जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, ओले ओले. अगर राम की तरह आपके पास भी ऐसे गाने हो तो लेट अस नो 972-235-5555. वी कैन टेक 6 or 7 सॉन्ग्स बिफोर वी कॉल इट अ नाइट. थैंक यू.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. You're listening to Sunday Pop Station with Prem Joshi. अभी मेरी बहुत ही amazing conversation हुई with Miss Nalini Dave, जिन्होंने ये गाना recommend किया था. Can you imagine? We were just talking for like 30, 45 seconds, and we could identify the building that we used to go to. Not just the same city, not just the same street, but the same building. So that's the power of conversation, ladies and gentlemen. Keep them coming. बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, बहुत अमेजिंग रिक्वेस्ट आ रहे हैं. एंड ऑफकोर्स इफ यू आर नॉट एबल टू कॉल अस, यू कैन ऑलवेज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेर एवर यू डू योर टाइम पास ऑन सोशल मीडिया, वहां पे हम अवेलेबल है यार. प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. वी टॉक टू सम अमेजिंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम सम अमेजिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, विच यू नो हेल्प्स आवर लाइव्स इन अमेरिका. फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इमिग्रेशन अटर्नी के साथ कितनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हुई हमारी 2 वीक पहले. आयुर्वेद डॉक्टर बेस्ड इन US, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो भी आप, साइकाइट्रिस्ट, एजुकेशन कंसल्टेंट, हम सभी के साथ बात करते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर करते हैं, राइट? सो इट्स अ वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट, प्लीज फॉलो अस देयर. लेट्स हैव सम कॉन्वर्सेशंस. ड्रॉप डाउन, गो टू द कॉमेंट सेक्शन, फीडबैक डाल दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा. प्रेम जोशी पॉडकास्ट. Here we go. Next gana is A. Kya bolti tu?

0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

your voice. I am singing song. Soup song. Flop song.

सच एन आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम अपना सपना मनी मनी यार, ये जब भी सेट मैक्स जी सिनेमा पे आती है ना यार, मैं हमेशा देखता हूँ। आई फील लाइक आई वॉच दिस मूवी 15 times इन पार्ट्स एंड आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच सो फॉर सो मेनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन यार, आज बहुत मजा आया। 8 से लेकर 10 बजे तक हमने इतने सारे कॉन्वर्सेशन किए फ्रॉम आर डैलस वासियों के साथ। सम अमेजिंग नॉस्टैल्जिक मेमोरीज वर शेयर्ड, सम अमेजिंग इमोशनल स्टोरीज वर ऑल्सो शेयर्ड, क्योंकि 8 से लेकर 9 बजे तक हम बजाते पॉप सेगमेंट, यू नो सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम्स लकी अली, शान, यूफोरिया, अलीशा चिनॉय, यू नो ऑल दोज अमेजिंग पॉप आर्टिस्ट जिसने हमारी 90s और 2000s एकदम बेहतरीन कर दी थी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो या वो 8 से लेकर 9 बजे तक पीपल लव्ड लव्ड आर सेगमेंट, एंड फ्रॉम 9 से लेकर 10 बजे तक हम बजाते हैं सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स। वी एंजॉय बोथ दी सेगमेंट्स, थैंक यू सो मच। ऑफ एयर मेक श्योर यू फॉलो अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप टाइम पास करते हैं वहाँ पे हम अवेलेबल है यार। इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI पॉडकास्ट। वी टॉक टू सम अमेजिंग पर्सनैलिटीज एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फ्रॉम इमिग्रेशन, हेल्थ, फाइनेंस, वेल्थ, साइकाइट्रिस्ट, सबके साथ बात करते हैं हम जो हमारी लाइफ यहाँ पे बेटर कर सके। ऑल राइट, लास्ट 2 songs ऑफ द नाइट, और ये गाना बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है बिकॉज आई पर्सनली लव दिस सॉन्ग एंड प्रियंका हैज रिकमेंडेड दिस सॉन्ग, हु इज डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू शर्ली बिकॉज हर कजिन्स एंड हर फैमिली फ्रेंड्स हैव कम ओवर एंड दे आर मीटिंग आफ्टर 19 years, यू नो 19 years, कुंभ के मेले में बिछड़े थे, 19 साल बाद डैलस में उनका मिलन हुआ। सो अरे नहीं यार, कुंभ के मेले में नहीं थे, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ जोक। बट या शर्ली, प्रियंका एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू अस, हियर्स योर सॉन्ग, आई होप यू एंजॉय दिस एज मच एज आई विल। तुम हो तो, फ्रॉम द आइकॉनिक मूवी रॉक ऑन।

0: थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत मजा आया आप सभी के साथ बात करके, आपके सभी के रिक्वेस्ट लेने में, एंड ऑफकोर्स आप सभी की स्टोरी सुनने में. इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज सो मच फन. वी डू दिस एवरी संडे फ्रॉम 8 to 10. आई होप यू आर पार्ट ऑफ आर जर्नी एज आई वॉज पार्ट ऑफ योर जर्नी वेल यू आर हेडिंग बैक. मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. आई सी यू नेक्स्ट संडे, सेम टाइम सेम प्लेस. Bye bye.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
5: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
6: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Funasia.
7: I'm loving the music.
6: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
4: Hi this is Salim Merchant from Salim Suleiman and you're listening to me on Fun Asia Radio

0: Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत यही।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

समुझे मगर बस आशिकों पे रहे।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: ये मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे। Rewind.

अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: playing the music you want all day, every day, only on Funasia Radio.
1: काला जादू कर दिया तेरी आँख सोनी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

लूंगा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

टीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: एक बेटा

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: Rest a while and run a mile with Funasia Radio.

0: छोटी छोटी गल्लां पीछे लड़े आना कर।
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
3: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: It's Hoko.
1: Arey, bas bhi karo yaar.
10: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
1: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: तारा, वो तारा, हर
13: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वाला।

0: लोगों के लिए बहुत लकी है माँ। रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
1: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में।
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव।
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
1: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
1: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
7: Beta, 95% aaye?
8: Haan, mummy.
7: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
9: Mera?
7: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
1: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
12: अरे यार, घर मिल गया।
13: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु of Beam Real Estate. अजय is an experienced realtor. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का honest review देते हैं, pros and cons समझाते हैं, best price negotiate करते हैं, builder incentives दिलवाते हैं और closing पर cashback भी.
13: Seriously? अच्छे service भी और cashback भी?
1: बिल्कुल. Visit ajayprabhu.com and see why so many people are raving about him.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
3: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती। I'm sorry।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings or bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
8: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
16: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
17: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
18: जिंदगी एक रंगमंच है
19: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
20: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
21: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
20: कैसे?
21: पेज 3 ईटरी?
20: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
21: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
20: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
22: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
23: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco।
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
11: अरे यार, घर मिल गया।
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं, और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
13: बिल्कुल, विजिट अजयप्रभु.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग about him।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
8: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
7: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
2: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
15: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Funasia Radio.

0: This Rakshabandhan, Fun Asia Radio and Choctaw Casino and Resort in Durant, Oklahoma, want to hear your most unforgettable memory with your brother or your sister. You can send a one-minute voice note to the WhatsApp number 214-837-7147, 214-837-7147, and you could win exciting daily prizes, including dining experiences, entertainment, resort stays, and the grand prize, which is an unforgettable sibling reunion weekend at the Choctaw Casino and Resort in Durant. For complete contest details, you can check out the Fun Asia Radio social media pages, Choctaw Casino and Resort in Durant, where unforgettable memories are made together. You must be 21 or older to participate. Terms and conditions do apply. Please play responsibly. Thank you very much for making me a part of your morning. I'm in your cars with you, driving you to your destination this lovely Monday morning. It's the 17th of August, and as we get this week started here for you, we do wish you a lovely week. Right here in the Dallas-Fort Worth area, we are going to touch 105 degrees, and that, ladies and gentlemen, is not the heat index temperature. That's going to be the actual temperature. We are under a heat advisory. Y'all please stay cool out there as you head to work or school or wherever it is that you're going, right at 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Yaar, modern mangal sutra dhoonte thak gayi hoon.
6: To Karat Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern mangal sutras.
5: Seriously? Kaisa collection hai?
6: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
7: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco, next to Tanishq.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
8: सच में सब संभाल लेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. we've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
13: इस रक्षाबंधन चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
14: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
0: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning. We will get started on this 17th of August.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूड। Enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
5: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Bhook lagi hai? Ya bas kuch exceptional khana hai?
10: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
11: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
12: Weekend ka plan abhi tak nahi mara. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to gain.

0: That's my show for today. Meetu's coming on next. You all continue listening to the Fun Asia Network. Meetu's bringing a great show here for you on the airwaves of 104.9 FM. For those of you who would like to get in touch with me directly after I leave the studios, this is the number to call, 214-675-1754. And you all have a great week, starting right at 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
7: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
8: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
7: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
8: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
7: इंडिया तक।
8: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन अर्विंग।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko. Arey, bas bhi karo yaar.
3: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
2: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold coco taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
0: India ke sabse loved food brand में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज
4: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो।

दिस इज गपशप गली विथ मीठू। यहाँ पे मैं आपको ना कनेक्ट करना चाहती हूँ सीपी सुधीर पाए के साथ, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज उनके मीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। सो द एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन आई गो फॉर टेकिंग एनी सच सर्विसेज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बंदे के पास जाऊँ जिसने काफ़ी साल से काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छा नाम हो, एंड दैट्स दिस नेम माई टाइम इक्विटी। And you must remember to get in touch with them. 469-702-1272 is that number. Portfolio management, real estate opportunities, alternative investments that he can help you with. Whether you're planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity आपकी पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, टेलर मेड सोल्यूशन आपके लिए निकाल के लाएंगे, एंड दैट्स देयर स्पेशलिटी। डू रिमेंबर टू गो ऑन टू देयर वेबसाइट एंड फाइंड आउट मोर। इट इज राइट नाउ 10:15, दैट आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू मैच योर क्लॉक्स विथ, क्योंकि क्या होता है ना कि वीकेंड में हमारा क्लॉक जो है बॉडी क्लॉक के साथ साथ हमारे सारे काम का क्लॉक बिगड़ जाता है, या यू कह लीजिए कि रिलैक्स करते हैं और कुछ अपने ही धुन में वक्त जो बिताते हैं। तो बस वक्त को वापस से बैक ऑन ट्रैक, लेट्स ब्रिंग इट फॉर यू।

0: साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा टिम्पल दीक्षित उठती ने।
1: दैट्स नेहा भसिन्स वॉइस बाय द वे। बहुत लोगों को शायद ये सुनीति चौहान की आवाज लगे। शी हैज द सेम क्वालिटी, टोनल क्वालिटी एंड द स्टाइल एज वेल। उन्हीं की आवाज में ये गाना सुने बिफोर वी रन इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।

0: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
2: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
3: मैं हीरो।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: Tracks that put you on the right track.

काफी नहीं था इसका फर्स्ट सीजन, इसीलिए तो सेकंड सीजन की भी अनाउंसमेंट हो गई है. मुसाफिर कैफे का ये गाना, व्हाट एन अमेजिंग सीरीज इट इज. मजा आ गया सीरियसली, बहुत बहुत एंजॉय किया है. नेटफ्लिक्स पे विच रिलीज लास्ट मंथ, एक्चुअली लेट लास्ट मंथ, और मैंने फाइनली अभी देखा है एंड आई एम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज. लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसका सेकेंड सीजन भी अनाउंस कर दिया गया है. लुकिंग एट द पॉपुलैरिटी दिस शो हैज़ गॉटन, विक्रांत मासी, वेदिका पिंटो. वेदिका पिंटो का मैंने कोई भी, मैंने उनकी फिल्म पहले देखी नहीं हुई थी. जो देखी थी मैंने नोटिस नहीं की थी एक्चुअली. एक आदित्य रॉय कपूर के साथ कौन सी फिल्म थी, आई एम फॉरगेटिंग, आई एम जस्ट रिमेंबरिंग द सॉन्ग दैट शी वॉज फीचर्ड इन, घर नहीं जाना, वो जो गाना था. Anyways, Vedika Pinto is definitely a surprise package for me here. Even the other lead actress, Mahima, she was also fantastic. And Adil Hussain, kya lagte hain yaar, kitne like dignified personality. And everything about the series was so refreshing, really. Very nice. Very well done. Congratulations to the entire team. That's all that remains to be said. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही जगह पे everything together that you can get all under one roof, anxiety care, fibroscan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, आपकी annual physical, सारा कुछ ये एक ही जगह पे आपका हो सकता है. एंड दैट्स पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंड दे प्राइमरीली फोकस ऑन गिविंग यू द टाइम दैट यू नीड. जल्दबाजी नहीं रहेगी इनके अपॉइंटमेंट्स में, एंड दैट आई एब्सोल्यूटली लव. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द नेम, एंड द नंबर इज 214-666-6259. ऑल राइट, ये है वो सेगमेंट जिसमें कि हम आज के दिन रिलीज हुए कुछ गाने सुनते हैं, राइट. तो एक फिल्म मुझे मिला, एक्चुअली देर आंट टू मैनी फिल्म दैट रिलीज ऑन दिस डे, एंड दैट मेक्स मी वंडर वाई, क्यों ऐसा क्यों है. क्योंकि हर हफ्ते हर दिन एक्चुअली हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन इस दिन का कुछ ज़्यादा खास रिलीजेस नहीं था. और जो ये फिल्म थी वो चली नहीं थी. 17 अगस्त 1990 इट वॉज द फिल्म जवानी जिंदाबाद, जो कि जी हाँ वही आमिर खान और फरा की जो फिल्म थी. और ये जो प्लॉट है, इट सॉर्ट ऑफ फोकस्ड ऑन यंग पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम. तो ये फिल्म एक रीमेक थी किसी कनाडा फिल्म की, जो मैं प्रोनाउंस करने का की मतलब बिल्कुल जुर्रत नहीं करने वाली हूँ. एंड आई एम गोना स्ट्रेट प्ले दिस सॉन्ग, एंड दिस एज आई सेड डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. एंड दे दीज काइंड ऑफ underperforming films is what led Aamir Khan to be more careful about his choices in the future. Because वो कयामत से कयामत तक के हिट होने के बाद बहुत सारी उनको ऑफर्स मिल रही थी और बहुत सारे उन्होंने साइन कर लिए थे, उनमें से ये एक फिल्म थी. Which made him realize he needs to be more cautious and more picky about the roles he performs on screen.

एंड वंस अगेन इट इज अ मूवी दैट स्टार्स सलमान खान, सॉरी आमिर खान एंड फराह, एंड ये 1990 में रिलीज हुई थी आज के दिन, विच डिड नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन चलिए एक ऐसी फिल्म पे लेकर जाती हूँ विच डिड एक्सट्रीमली वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड बिकेम एन ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर एंड द हाइएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 1985. और ये वो फिल्म है जो राज कपूर साहब की फाइनल डायरेक्टोरियल वेंचर थी. आई एम श्योर यू गाइज हैव फिगर out which film I'm talking about. तो उस फिल्म पे जाएं और उसका गाना एक अच्छा सा सुनवाऊं मैं. उसके पहले मैं उमर अटर्नी उमर ख्वाजा के बारे में बात करना चाहती हूँ. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो दैट एन एक्सीडेंट कैन हैपन एनी सेकेंड. हाँ, लेकिन उसमें से रिकवरी जो है इट टेक्स इटर्निटी लेडीज एंड जेंटलमैन. और जब ऐसे आपको कुछ कॉम्पनसेशन की ज़रूरत होती है तो यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द मेस ऑफ डूइंग इट एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ फाइट करना यार एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है. एंड इसीलिए दैट इज़ वेयर एग्जैक्टली अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम कैन हेल्प यू विद द लीगल बैटल. सो गेट इन टच विथ देम एंड वाइल यू आर हीलिंग दे विल फाइट योर बैटल. बिल्कुल ऐसे कि आपको पेमेंट तब तक नहीं करना जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते. एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉन्फिडेंस दैट एनी सर्विस प्रोवाइडर कैन गिव यू. तो ज़रूर कॉल करें 4693005046 इज दैट नंबर टू कॉल. अटर्नी ओमर डॉट कॉम इज द वेबसाइट एंड कॉल देम फॉर दैट फ्री कंसल्टेशन that they are offering. और उन्हीं के तरफ से आपके लिए ट्रैफिक अपडेट. राइट नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड. थैंक यू फॉर ड्राइविंग सो सेफ एंड बीइंग सेफ ऑन द रोड्स, विच इन टर्न मीन्स यू आर गिविंग दैट सेफ्टी टू एवरीबॉडी एल्स एज वेल. बस एक कंस्ट्रक्शन के कारण एक माइनर एक ब्लॉकेज जो है उसके बारे में बता देते हैं. इट इज़ ऑन 183 एट मॉकिंग बर्ड लेन ईस्ट बाउंड, जहाँ पर आपका राइट शोल्डर जो है अलॉन्ग विद द राइट लेन विच इज़ ब्लॉक्ड. और इसके लिए कुछ टेम्प्ररी जो बैकअप्स हैं. इट इज़ नॉट ए मेजर बैकअप, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम कीप सम टाइम इन योर हैंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग दैट राउट. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. ये अगली फिल्म जिसका नाम है राम तेरी गंगा मैली. मंदाकिनी के कुछ बहुत ही बोल्ड सीन्स थे और उसके कारण काफ़ी हंगामा मचा था, काफ़ी कंट्रोवर्सी थी. और लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी द फिल्म डिड वेल. एंड लेट मी टेल यू, ऑल इंडियन फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उस वक्त यूनिवर्सल टैग दिया था. दैट्स द रेटिंग दे गेव. बट दैट सर्टिफिकेट वॉज चेंज टू UA एंड दैट इज़ द फिल्म राम तेरी गंगा मैली, विच रिलीज ऑन 16th of August. कल के दिन ये रिलीज हुई थी इन द ईयर 1985.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
6: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो.
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
9: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस. बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू. एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 Suite 205, Frisco.
11: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

दैट रिक्वेस्ट वाज अनीताज रिक्वेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इट माय वे, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ऑलवेज वॉर्म्स मी अप. वॉर्म तो नहीं करना चाहिए अभी क्योंकि इतना हॉट है यार अगस्त में, और कितना वॉर्म चाहिए यार सीरियसली. बट सीरियसली द टेम्परेचर विच हैज़ ए हीट एडवाइजरी इन स्टोर फॉर अस अंटिल 8 PM, दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो लेडीज एंड जेंटलमैन. ऐसी कोई बात नहीं वैसे कि आप जानते नहीं हो, आप टेक्सस में हो, आप डैलस में हो, आप जानते हो इस वक्त गर्म होता है और गर्म है. द वेदर इज नॉट डिसअपॉइंटिंग यू इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट दिस मंथ होल्ड्स. ऑलराइट, तो आज जो हमारा टेम्परेचर होगा, राइट नाउ इट इज एट 94 degrees, बट इट इज गोइंग टू गो ऑल द वे अप टू 106 degrees टूडे. और हमारा जो इन हीट इंडेक्स वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, तो यू कैन इमेजिन वाई द हीट एडवाइजरी इज़ इन एक्शन. हमारा अगस्त वेदर जो है इट विल कंटिन्यू इन टू नेक्स्ट वीक एज वेल. हाई टेम्परेचर्स विल सोर इन द ट्रिपल डिजिट्स ईच डे विथ प्लेंटी ऑफ सनशाइन. कोई बारिश के चांसेस नहीं है. अब करीब एक महीना कुछ हो गया है कि जब हमें थोड़ी सी ना आप चाहिए बारिश, कंबाइंड विथ ड्रॉपिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लाइट ब्रीज दैट देयर हैज़ बीन, जिसके कारण फायर डेंजर के चांसेस भी बढ़ रहे हैं अक्रॉस द एरिया. सो बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट. आज का हाई तो मैंने बता दिया 106 एंड लो विल बी अराउंड 81. टुमारोज हाई अराउंड 105 एंड लो विल बी अराउंड 81 एज वेल. ब्रीजी रहेगा और इसीलिए दैट फायर डेंजर इन एक्शन ऑल्सो. सो वंस अगेन दिस इज गपशप गली विद मी टू. हमारी गपशप यहीं पे जारी रहेगी क्योंकि आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: इमरान हाशमी एंड अजय देवगन्स फिल्म दिल तो बच्चा है जी का ये गाना सुन रहे थे। और इमरान हाशमी का ना एक चीज़ तो कहना पड़ेगा कि भाई उनकी फिल्मों के गाने दे आर ऑलवेज चार्ट टॉपिंग साउंड ट्रैक्स एंड ही हैज़ बीन क्वाइट फॉर्चुनेट दैट वे ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सच म्यूजिक, राइट। आप सोचें कि कितने सारे रोमांटिक एंड थ्रिलर मूवीज किए हैं, ज़्यादातर फिल्में चली हैं उनकी, और जो नहीं भी चली हैं ना उनके भी गाने लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। एंड ये एक अपने आप में एक कमाल की बात होती है, because the longevity of the stars also sort of stays in the minds of the people, you know, with those chart-topping soundtracks. Toh ek aur gana ho jaye Imran Hashmi ka. If there is a song that you would like to listen of Imran Hashmi's, ekdam abhi ke abhi turant mujhe call karo aur apne favorite Imran Hashmi gaane ko aap sun sakte ho. Considering ki Awara Pan 2 has done very well at the box office, ladies and gentlemen, agar aapne dekhi hai to wo bhi आप हमें बता सकते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड दिस सीक्वल ऑफ द 2007 फिल्म आवारापन। जरूर बताइएगा कि आपने अगर फिल्म देखी तो कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है, देखने वाले हैं, तो बता दूं भाई कि बॉक्स ऑफिस पे कमाल का कर रही है ये फिल्म। और फिलहाल आई एम इन सर्च ऑफ अनदर इमरान हाशमी सॉन्ग एंड आई हैव समबडी विद मी ऑन एयर। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम यू, कौन सा गाना इमरान हाशमी का आप सुनना चाहोगे? Hi, I'm doing very well. आप बताओ?
1: Good, all good. So, actually, Imran Hashmi has been all-time favorite because of the song choices, and he has some different personality.
0: Yep.
1: The song I would like to request is Tu Hi Haqeeqat.
0: Tu Hi Haqeeqat. What a wonderful song that is. चलिए चीनू जी, आप ही के नाम किया ये गाना, let's dive straight into it. Thank you so much for your call. Right. Appreciate.
1: Thank you.
0: And it is Tu Hi Haqeeqat from Tum Mile. Preetam ka music phir ek baar.

That's Imran Hashmi's very popular track. एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है आकाश की तरफ से, वो भी पूरा करना चाहते हैं along with Chinu's request that we just played for all of you. Once again, this is Gapshap Gali with Meetu. और इस गाने में भी कुछ धूप का mention था और गर्मी, तो उसके बारे में बता ही चुकी हूँ कुछ वेदर अपडेट के साथ. लेकिन आपको पता है टेक्सास स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जैरेड पैटरसन, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेंटन काउंटी, ये जो है कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज स्कूल ईयर. लेडीज एंड जेंटलमैन, ही वॉन्ट्स द स्टेट स्कूल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त टू सेप्टेम्बर, दैट ही वॉन्ट्स टू मूव थ्रू अ प्रपोज बिल टेंटेटिवली नेम्ड एज सेव आर समर एक्ट. एंड आई थिंक आई एब्सोल्यूटली अग्री विथ मिस्टर पैटरसन, क्योंकि देखिए ना, ट्रिपल डिजिट जो हमारे अगस्त में रहता है वो कितना डेंजरस एनवायरमेंट होता है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे बाहर भी जाते हैं मार्चिंग बैंड्स के लिए, चीयर लीडर्स प्रैक्टिसिंग आउटडोर्स, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग आउटसाइड. तो ऐसे में स्टूडेंट और स्टाफ की सेफ्टी इज इन क्वेश्चन. और इसके अलावा पुशिंग स्कूल बैक वुड ईज लेट समर डिमांड्स ऑन द स्टेट्स इलेक्ट्रिकल ग्रिड, एंड आई थिंक that definitely adds to it, right? It schools जो electricity consume कर रही है उस पर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हमारे electrical grids को थोड़ी सी राहत मिलेगी. And of course the economic impact also that he added on, extending the summer into September would boost the Texas tourism and hospitality economy by allowing families to visit amusement parks and attractions longer. तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन I think I

0: लिसन अ टॉपिक कमिंग अप फॉर डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेगमेंट स्टे ट्यून।
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
9: Hey, tumne kabhi insurance liya?
10: Liya.
9: Kabhi policy samajh bhi aaya?
10: Nahi aaya.
9: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.senadainc.com today.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: Tracks that put you on the right track.

Listen, this part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US, जो आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे आपका स्टार्टअप हो, एस्टैब्लिश बिजनेस हो या आप इंडिविजुअली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. AG Fintax आपके लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लेकर आता है, एब्सोल्युटली टेलर मेड टू योर नीड्स, चाहे वो बुक कीपिंग हो, पेरोल अकाउंटिंग हो, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलेशन से लेकर प्रोएक्टिव tax planning, tax compliance, financial reporting and other business advisory services that you might be seeking. They can help you keep your finances absolutely organized और जिसका सीधा सीधा implication ये होता है कि आप बिल्कुल future ready रह सकते हो. इसीलिए चाहते हैं कि आप इनके साथ connect करें, बात करें, figure out how they can help you and they certainly can. 469-942-9888, that's the number. agfintax.com is the website. And yes, AG Fintax is your partner in building a stronger financial future. Get in touch with them. Thank you once again for tuning into Gupshup Gali with me too. तो हमारी गपशप जब तक उस लेवल पे ना हो जहां पर आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर पाए, तो क्या ही गपशप हुआ, है ना. तो इसीलिए आज का टॉपिक जो मैं चुनने वाली हूँ, इट इज अबाउट टिपिंग सर्वर्स. ये जो कल्चर है ये यहाँ पे बहुत प्रीडोमिनेंट है और इसका आप क्या करते हो, ये कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. कुछ इनपुट मैं जो जनरली एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बताना चाहती हूँ आप लोगों को, फॉर आस टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट कि कितना टिप देना चाहिए हमें और कहाँ कहाँ वो ज़रूरी है, एब्सोल्युटली ज़रूरी है. क्योंकि क्या है ना कि हम ऐसे कंट्रीज से आए हैं जहाँ पे ये टिपिंग कल्चर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से हमने देखा ही नहीं है, और जब देखा ही नहीं है तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन समझ लें कि अब हम जहाँ पर हैं उस जगह के हिसाब से क्या सही है वो बताना चाहते हैं. दिस इज़ गपशप गली विथ मी टू, एंड इफ़ यू हैव एन इनपुट हियर, give me a call, 972-235-5555. I have a giveaway for you, okay?

0: जी हाँ, एक जो नूर आप देखते हो व्हेन यू टिप द सर्वर ब्यूटिफुली इज व्हाट मेक्स यू समटाइम्स हैप्पी। अगर किसी सर्विस से आप बहुत खुश हुए तो आप ज़रूर टिप करते हो। तो क्या आप टिप करते हो जब आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी हो, तब भी क्या आप टिप करते हो? दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन आई माइट वॉन्ट टू आस्क। 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो। ऐसा है कि फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से आपके लिए $10 का गिफ्ट कार्ड दैट अवेट्स एट द फ्रिस्को लोकेशन इफ यू विन इट। ऑल राइट, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप जो है, दे आर अ फ्लेवरफुल फिएस्टा फॉर ऑल ऑफ यू। वो फिएस्टा वेजी टू द फायरी पोलो लोको, द सी फूड पैक्ड सिनोर कैमरॉन एंड ऑल्सो द मुचो माचो पोक, ऑल ऑफ दैट, एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस। तो अगर आप $10 का गिफ्ट कार्ड जीतना चाहते हो फ्रॉम फन पिज्जा किचन फ्रिस्को, बी पार्ट ऑफ दिस टिप टिपिंग कल्चर, द ग्रेट अमेरिकन टिपिंग कल्चर। लेट्स फाइंड आउट, यू आर लाइव ऑन एयर। बताइए क्या इनपुट है आपकी। अगर आपको सर्विस पसंद आती है, आप सिर्फ तभी टिप करते हो कि अदरवाइज एज वेल?
1: Honestly, to tell you, I tip no matter whether the service is good or bad. I definitely tip the person because they took all the time to serve you.
0: Absolutely. And this is the sentiment everybody needs to have. आपने तो पहले कॉल में हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। What's your name, sir?
1: RK.
0: RK, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से दिस गिव अवे। प्लीज होल्ड द लाइन, आई विल टेक ऑल योर डिटेल्स ऑफ एयर। कांग्रेचुलेशंस टू यू। और बात करते हैं टिपिंग कल्चर के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि बातें तो अभी बाकी हैं। कहाँ टिप करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, द ग्रेट अमेरिकन टिपिंग कल्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे।

मैं क्यों है कि मतलब हमारे कुछ जो देसी क्लाइंट्स होते हैं हु गो टू द रेस्टोरेंट्स आर नॉट अप्रिशिएटेड मच. आई विल टेल यू व्हाई एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आप ठीक से टिप नहीं करते हो सर्वर को, दे आर अपसेट. द नेक्स्ट टाइम यू गो, बिलीव इट और नॉट, दे विल रिमेंबर यू कि इन आपने टिप सही तरीके से नहीं दिया. आई एम नॉट डेफिनेटली जनरलाइजिंग दिस स्टेटमेंट, बट मैनी ऑफ आस डोंट टिप द सर्वर्स वेल, एंड दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ टू बी माइंडफुल. जैसे कि आर के साहब ने भी कहा कि भाई अच्छा हो या खराब हो सर्विस, टिप तो आपको करना ही चाहिए. कंसिडरिंग मिनिमम वेज फॉर रेस्टोरेंट सर्विस इज शॉकिंगली लो इन मोस्ट स्टेट्स, तो उनकी एक्चुअल इनकम टोटली हमारे टिप्स पर डिपेंड करती है. सो थोड़ी देर के लिए हम अपनी देसी आदत को साइड में रख के ये अप्रिशिएट करना जरूरी है, उनका हार्डवर्क अप्रिशिएट करना जरूरी है. अडेप्टिंग टू द कल्चर हियर इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर अमेरिकन टिपिंग कल्चर को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने जाऊं, तो रेस्टोरेंट चलते हैं सीधे कि खाना खा लिया आपने और फिर आया आपके टेबल पे बिल, और दिमाग में इंस्टेंटली वो सारी मैथ शुरू हो जाती कि कितना देना है, व्हाट इज द राइट अमाउंट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो कितना एक्सपेक्टेड है इस इंडस्ट्री में टिप आपकी तरफ से, ये बताने वाली हूँ. बेसिक रूल ऑफ थंब क्या है ये बताने वाली हूँ. 15% इज द एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम इफ द सर्विस वॉज जस्ट ओके. ऑलराइट, सो इन एनी विच केस यू हैव टू, आपको सर्विस अच्छी लगी या नहीं लगी. 18% स्टैंडर्ड है, एंड इफ योर सर्वर टू ग्रेट केयर ऑफ यू, तो 20% या उससे ज्यादा फिर आपकी श्रद्धा है. एक और जरूरी बात, नेवर टिप पुअरली जस्ट बिकॉज द फूड वॉज बैड. किचन की गलती की सजा आप अपने सर्वर को नहीं दे सकते. अब बात करते हैं टेक आउट या कॉफी शॉप के लिए, वो भी आप ही के टिप के बहुत जरूरी है कि आप उन्हें टिप करें. सच ये है कि यू डोंट हैव टू टिप 20% फॉर अ ब्लैक कॉफी. $1 या $2 शुड बी फाइन, बट नन द लेस इट इज कम्प्लीटली अप टू यू टू हाउ मच टू टिप, बट यू मस्ट. जहां आप नहीं कर सकते टिप, नहीं कर सकते या नहीं एक्सपेक्टेड है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट गाना. टिपिंग, द ग्रेट अमेरिकन टिपिंग कल्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट.

0: दास्तां ये है टिपिंग कल्चर की, द ग्रेट अमेरिकन टिपिंग कल्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इन द US टिपिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड. कि अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाते हैं, सेल्फ सर्विस काउंटर्स पे या रिटेल स्टोर्स पे, और व्हेन डीलिंग विद वर्कर्स हु आर एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टिप्स, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंस, जी हाँ, इन सब जगह पे टिपिंग इज नॉट एसेंशियल. बाकी रही हेयर कट्स, थ्रेडिंग या मसाजेस अगर आप लेने जाते हैं, तो लीविंग ए नाइस 15-20% टिप इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. और अगर आप ज्यादा खुश हैं तो ज्यादा दिल खोल के दीजिए. ये सर्विस इंडस्ट्री डायरेक्टली आपकी केयर कर रही है, सो शो देम सम लव. या फिर आते हैं राइड शेयर्स या लेट्स से फूड डिलीवरी एप्स जो होते हैं ना, जब आप ऊबर यूज करते हैं और या फिर डोर डैश यूज कर रहे हैं, रिमेंबर दैट दीज ड्राइवर्स आर यूजिंग देयर ओन कार्स एंड देयर ओन गैस. तो उनको एक $3-5 एक्स्ट्रा या तो फिर एक बेसिक थंब रूल के हिसाब से 15-20% जो है टिप देना मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस फॉर देम. सो डू दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां भी दे सकते हैं टिप, जहां आपको लगता है कि आपने सर्विसेज उनके लिए हैं और आपको सर्विस अच्छी लगी तो दिल खोल के दीजिए. बाकी हर जगह सर्विस टिप देना ज़रूरी है, जस्ट बी माइंडफुल अबाउट दैट. वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू. हमारे अगले सेगमेंट में कुछ ताज़ा, कुछ नया जो हम शेयर करते हैं इन द सेगमेंट द फ्रेश ड्रॉप, दैट्स कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट. इन द मीन टाइम यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज क्विकली टेल यू अबाउट द रक्षाबंधन, यू नो the celebration that Fun Asia and Choctaw Casino and Resort are doing. It is in Durant, as you know, the Choctaw Casino and Resort. And I want you all to remember ki bhai apne bhai ke saath, apne behen ke saath, kuch achha sa kuch ek anecdote aap share karo, ek minute ka voice note share karo. WhatsApp kar sakte hain aap at 214-837-7147, and you could win exciting daily prizes, ladies and gentlemen, including dining experiences, entertainment, resort stays, and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durant. Zarur yaad rakhe, must be 21 or older to participate in this one, and please play responsibly. That definitely goes along with Choctaw Casino and Resort in Durant.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
9: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, Chandigarh Bites Express in Allen.
11: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
12: And now at a bigger location, just three doors down, with limited reservation available.
13: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
14: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
13: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
14: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक।
14: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
12: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: भूख लगी
16: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
17: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये astrology जो बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
19: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
22: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
23: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक।

बिल्कुल नम्र रह जाते हैं जब हम टिप की बात करते हैं या टिपिंग कल्चर, द ग्रेट अमेरिकन टिपिंग कल्चर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट सेगमेंट. और मुझे यहाँ एक कॉल मिलता है जो एनॉनिमस रहना चाहते हैं, इसीलिए नाम तो हम नहीं बोलेंगे और उनको हम ऑन एयर नहीं ले पाए, लेकिन दिस इज समथिंग आई थॉट आई मस्ट टेल यू ऑल. उन्होंने कहा कि कुछ 18 साल से ही हैज़ बीन, आई थिंक 18,000 पैसेंजर्स ही सेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ए बिग नंबर दैट ही सेड दैट ही हैज़ ड्रिवन पीपल टू देयर डेस्टिनेशन. He drives for Lyft. और उन्हें ये हमेशा उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो कभी टिप नहीं करती, और अगर करती भी है तो बेयर मिनिमम इन सेंस समटाइम्स दे डू टू समटाइम्स मेक द फिगर राउंड मेक द बिल ए राउंड फिगर, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट पीपल हैव डन. एंड दिस इज प्रीडोमिनेंटली ट्रू फॉर पीपल फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज. ए ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैट ही गेव, ज़्यादातर लोग टिप नहीं करते हैं, एंड दैट इज सो सो वेरी सैड. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमें अपना जो देसीपन है, जो हम अपनी कंट्री से आते हैं, हमें टिपिंग के बारे में पता नहीं होता. अब जब पता है, आगे चल के आई होप यू विल फॉलो दैट, कहीं भी आप जाएं, एक थंब रूल के हिसाब से आप समझ लें, एनीवेयर बिटवीन 15-20% ऑफ टिप इज मच अप्रिशिएटेड. ही इनफैक्ट सेड, दिस जेंटलमैन हु डिडंट वांट टू गो ऑन एयर, ही सेड कि वो DFW पे जब वो वेट करते रहते हैं असाइन जगह पे, तो देर आर सम प्रेगनेंट ड्राइवर्स ऑल्सो ही हैज सीन, जो यू नो कई बार 6th, 7th, 8th month पे भी ड्राइव कर रहे होते हैं. एंड आप सोचें, अगर हमारी कम्युनिटी से उनके कार में कोई बैठता है, कोई टिप नहीं करता, इट इज़ सो वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड दैट इज ऑल्सो he wanted to make sure that we all understand ki kitna zaruri hai ye tip karna, chahe aap restaurant mein gaye ho, chahe aap you know uber ya lyft use kar rahe ho, ya fir delivery door delivery agar kuch karwa rahe ho, in sare cases mein. And beyond that, remember, if you have had taken a service, make sure to definitely tip. Bottom line, when in doubt, just be generous. थोड़ी सी एक्स्ट्रा टिप देने से आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन ट्रस्ट मी, आप उनका दिन बना दोगे. एंड दैट इज वॉट एन अल्टीमेट देसी गाइड टू अमेरिकन टिपिंग कल्चर दैट आई कैन गिव यू राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. ऑलराइट, द फ्रेश ड्रॉप सेगमेंट दैट वी हैव राइट हियर फॉर ऑल ऑफ यू. नया ताज़ा, एनीथिंग दैट्स कम माई वे विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग विल कम योर वे.

You are tuned into Gupshup Gully with me too. अगर आपने होको का नाम नहीं सुना हमसे तो किसी और से जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर जगह है और इंडिया के बाहर अब ये अपना जो दिखा रहे हैं ना, ये जमा रहे हैं अपना होको, अपना रेस्टोरेंट जो जमा रही है उसमें फ्रिस्को इज वन ऑफ द लोकेशंस एंड aren't we excited about that? And that's exactly what Hoko has been for generations across India. That nostalgia, it is right here for all of you in North Texas. ज़रूर याद रखें कि भाई Hoko का वही चना पूरी जो आप बहुत enjoy किया है आपने, iconic उनके जो sandwiches हैं जो बहुत enjoy की थी आपने, flavorful curry से लेकर उनका famous Hoko cold Coco, ये सारी कुछ चीज़ें that you can try right here in Frisco. And आपके GPS के लिए वो location है 2693 Preston Road Suite 1000 Frisco में. ये location आपके अब जहन में रहना चाहिए. And if you haven't tried, go and try it. It is definitely one of the most flavorful places, Indian places that you're going to find. मैंने जो पता किया और थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश की, कुछ 1944 से दे हैव बीन इन एक्शन बैक इन इंडिया. कैन यू इमेजिन दैट लेगेसी कमिंग टू फ्रिस्को? डू एंजॉय लेडीज एंड जेंटलमैन Hoko रेस्टोरेंट राइट हियर इन फ्रिस्को.

लिसन, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इफ इट ain't ब्रोकन डोंट फिक्स इट? ये मेमो जो है शायद इंस्टाग्राम के हेड तक नहीं पहुंचा और इसीलिए 10 साल बाद ही जस्ट ड्रॉप्ड ए ब्रांड न्यू कर्सिव वर्ड मार्क फॉर द ऐप, क्लेमिंग इट इज क्लीनर एंड मोर मॉडर्न. किस एंगल से भाई? इंटरनेट इस पे ना कितने सारे मीम्स बना रहा है, यू हैव नो क्लू. इट्स अ मीम फेस्ट फॉर द वर्ड मार्क दैट दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्यू डेज बैक. एंड द फनीएस्ट पार्ट इज द न्यू वर्ड मार्क रिवर्ट्स बैक टू इवन मोर डीपली इनटू द कर्सिव स्टाइल. और आप सोचिए जरा, जेंजी और मिलेनियल्स, हम कहाँ कर्सिव नेटिव्स हैं यार. विद द राइटिंग स्टाइल गोइंग आउट ऑफ वोक विद न्यू एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन द 2010s, जेन अल्फा तो भाई बिल्कुल भी नहीं है. तो ये मॉडर्न किस एंगल से हुआ, ये समझ नहीं आया हमें. अब क्या है ना कि लोगो रीडिजाइन्स हमेशा आग लगाती आई है. यू रिमेंबर इन 2016 व्हेन इंस्टा स्विच्ड फ्रॉम द विंटेज कैमरा टू द नियॉन स्क्वायर. द न्यू एयर बीएनबी का जो 2014 डिजास्टर था वो भी कुछ ऐसा ही था, जहां पे आपने एक्सीडेंटली द फॉन्ट लुक्ड लाइक ह्यूमन एनाटॉमी एंड इट वाज Not appreciated at all. They were pulled down and हमने पिछले साल इसी वक्त अगस्त के महीने में ही एक्चुअली क्रैकर बैरल का भी ये जो लोगो चेंज देखा था. दे रिमूव दैट अंकल हर्शल सिलुएट फ्रॉम द लोगो एंड द स्टॉक प्लमेटेड. दे लॉस्ट ऑलमोस्ट $100 million. यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो वेड इन और एंड में उनके सीईओ जो हैं जूली मेसिनो, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा एंड अब वो लोगो वापस लाना पड़ा. सो दैट्स द हंगामा दैट गोज विथ लोगो चेंज एंड ऑल. तो इंस्टा ने ऐसी जुर्रत कैसे कर ली, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वॉट हैपन्स. भाई 2016 में भी अकोमोडेट कर गई थी जनता, तो देखते हैं अब क्या होता है.

0: Listen, there was so much to talk about, but good that I'll be back same time tomorrow, 10 से साढ़े बारह के बीच मैं वापस आऊंगी. और इस आखिरी सेगमेंट में देर इज सो मच ऑफ ताजा एंड न्यू टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. आज जो कवर नहीं हुआ कल कर लेंगे यार, जो आज नहीं हो सके वो कल कर लें. ये आपके लिए भी छोटा सा एक एडवाइस देते जाना चाहती हूँ. डोंट स्ट्रेस आउट लेडीज एंड जेंटलमैन. जो आज जितना आप प्रेजेंट रह के कर सकते हो उतना करो यार, बाकी कल के लिए छोड़ दो और कल फिर उसे एंजॉय करके करो. डोंट टेक टू मच ऑफ लोड यार एक दिन में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ दैट. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू रिमाइंड यू कि टेक्सास बिजनेस ओनर्स के लिए एक खास खबर. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, दैट नेम इज तारा कमर्शियल एनर्जी. प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेस सिंस 2002 विथ कम्पेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. जरूर कॉल करें उन्हें एट 8444 428 2808. TaraEnergy.com is the website. And that's all the time I have with you all. Kal mulaqat hogi theek 10 baje. This is Me Too, signing off for the day.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
6: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट TaraEnergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
12: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो।
17: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

Good afternoon, Dallas. 12:30 ho chuka hai, and this is Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM par. So it is Monday. Aaj adulting ki baat karenge, but wo wali nahi jo Instagram pe 5 habits bolta hai aur bolta hai this is how successful people make. Main baat karti hu adulting ke hidden fees ki, jaise kisi ko birthday wish karna, yaad rakhna, family group mein scene ke baad guilt फील करना, घर में वो एक ड्रॉअर जिसमें सब कुछ है बट कुछ मिलता नहीं. ये सब लाइफ के इनविजिबल टास्क होते हैं. आपको सबसे वियर्ड अडल्टिंग टास्क क्या लगती है जो काम टेक्निकली इजी होती है बट मेंटली एग्जॉस्टिंग? अड्डा में आज हम वही अनपैक करते हैं. इफ देयर इज समथिंग यू हैव व्हिच यू फील वियर्ड अबाउट अडल्टिंग, कॉल अस एंड लेट मी नो. आज बात करेंगे अडल्टिंग के बारे में बिकॉज इट्स मंडे. लेट्स कीप अस मोटिवेटेड मजे और फन के साथ.

let me tell you something. Why is everyone's calendar booked? एक टाइम था जब दोस्तों को मिलना होता तो बस बोल दिया शाम को मिलते हैं. अब नेक्स्ट थर्सडे आफ्टर सिक्स थर्सडेज बट आई हैव अ कॉल एट 7:30 हम फ्रेंडशिप नहीं कॉन्फ्रेंस शेड्यूल कर रहे होते हैं. और फनी थिंग इज बस सब बिजी रहते हैं बट सबको कनेक्शन भी चाहिए. तो क्वेश्चन है आज थोड़ा रियल, आपके फ़ोन में वो कौन है जिसने आपको जेन्युइनली मिलना चाहते हो बट मंथ से महीने से सालों तक वी शुड मीट सून चल रहा है. मे बी आज वो मैसेज एक्चुअली भेज दो. नो ड्रामेटिक पैराग्राफ, बस कॉफ़ी दिस वीक. कभी कभी अडल्टिंग का बेस्ट लाइफ हैक इज प्रोडक्टिव नहीं बस इनिशिएटिंग होनी चाहिए. सो यू डोंट हैव टू मीट योर फ्रेंड्स एवरी डे, पर जब भी हो पाए तभी बस एक कॉफ़ी के लिए तो मिल लो.

What a beautiful song it was. अगर आप भी अपनी ड्रीम सेलिब्रेशन के लिए सोच रहे हैं चाहूं मैं या ना, तो द आंसर इज येस. वेडिंग हो, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशंस, वैनेसा इवेंट्स के साथ प्लानिंग के साथ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है. When you selection stunning decor by signature events, photography, hospitality or delicious catering by Becerra Grand, everything taken care of. Aap sirf memories banaye, celebration ka pura magic Vanessa Events sambhal lega. To celebration ke liye kahi hai, chahu main ya na, Vanessa Events, your celebration partner. Call Hari Becerra at 469-442-8770. So August ka maina hai, I know shadiya to ho rahi hai. You need any help with your events, you can contact Vanessa Events, guys.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
15: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
16: इस रक्षा बंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
17: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

welcome back. You're listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigda, only on Phoenicia 104.9 FM par. So, hum adulting ke baare mein baat kar rahe the, which we do on every Monday, Adulting 101. So, now let's talk about the 20-minute errand that steals your soul. अडल्ट लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? बस एक छोटा सा काम है, एक रिटर्न करनी है, एक बस प्रिस्क्रिप्शन पिक करनी है और एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करवानी है और सडनली आपकी पूरी आफ्टरनून उस एरेंड के ही नाम हो जाती है. इसीलिए मेरा न्यू रूल है, माइक्रो टास्क को अंडर एस्टिमेट मत करो. अगर कोई काम 10 मिनट का लग रहा है, उसको मेंटली 30 मिनट का रिस्पेक्ट दो. और बताओ, ऐसे कौन सी टाइनी टास्क है जो आप अननेसेसरीली वीक्स तक पोस्टपोन करते हो, लाइक लॉन्ड्री फोल्ड करना, कार वॉश, फोटोज डिलीट करना या वो मिस्टीरियस ईमेल जिसकी सब्जेक्ट ही क्विक फॉलोअप है. वही सबसे डेंजरस भी होता है. फॉर मी, आई थिंक आई कैन नेवर डिलीट ऑल द फोटोज. मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं डिलीट कर दूंगी, पर वो मुझसे होता ही नहीं है बॉस. पता नहीं मैं कब डिलीट करूँगी. आई ऑलवेज थिंक कि यार डिलीट करना है, यार मुझे वो करना है, ये करना है, बट माई बॉडी फील्स लाइक तू कब आराम करेगी, इट्स ओके, कल कर लूँगी. दैट इज़ ऑल वॉट वी ऑल डू. आई होप यू आर कनेक्टेड टू दिस. आप भी ये करते होंगे, थिंकिंग लाइक मैं बाद में कर लूँगी. एंड द अडल्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि नेवर थिंक 10 मिनट का काम 10 मिनट, उसको 30 मिनट या एक घंटा भी दे दो.

0: You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM par. Dosa lovers ready for a tasty giveaway, head to San Idli's Wedge Restaurant at 121 and Custard Junction for authentic 100% vegetarian South Indian food. Crispy dosas, fluffy idlis and amazing filter coffee. So, aaj ki giveaway ye hai. Today, you can win any dosa of your choice plus one filter coffee. Bas ek famous Bollywood dialogue suno, actor ko guess karo aur giveaway jeeto. Ready? Dialogue sunte hi, hame call karo at 972-235-5555 par. All you have to tell is, ye dialogue kis actor ne boli hai. I'm gonna play it right now, sun lijiye.
1: मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को। एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है मुझे आज तक समझ भी नहीं आई। मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए।
0: Come on, this is a famous movie and बहुत लोग इनको जानते हैं, तो कॉल कीजिए और बता दीजिए।

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
2: Visit www.senadainc.com today.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: welcome back. You're listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM Bar. So now it's time to the URA Debt Relief segment. Today we have pleasure of having the URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman, with us. He's going to tell us about URA Debt Relief programs. Hi, Mr. Aman. Thank you for joining us on 104.9 FM Phanisha Radio.
1: फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. महीना चल निकला, आधा महीना बाय बाय कह गया है. 17th ऑफ अगस्त हो चुकी है, जश्न आजादी मना चुके हैं, लेकिन आप अपनी फ्रीडम कब मनाएंगे, अपनी डेट फ्री फ्रीडम? उसके लिए आपको सिंपल एक छोटा सा काम करना होगा, उरा को कॉल करना होगा, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड की आंखें बंद करके मिनिमम पेमेंट पे पेमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि वो आपसे 40% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उतरेगा कैसे? 100 रुपया देते हैं, 40% ब्याज चला जाता है, तो वो क्रेडिट कार्ड नहीं उतरेगा. कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, या फायर हायर का चक्कर चल रहा है, जॉब नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देने से अगर आप परेशान हैं, तो आप उरा को कॉल कीजिए. आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाएगा. आधा कर्जा माफ हो गया, उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, प्रिंसिपल आधा कम हो गया, तो बाकी बचा आधा उसकी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बना देंगे. आराम से पे कीजिए, कोई बैंकरप्सी करने की जरूरत नहीं है. बैंकरप्सी के जितने कॉन्सिक्वेंसेस बाद में झेलने पड़ेंगे, उससे बेटर है सेटलमेंट की जाए, क्योंकि सेटलमेंट से आपका क्रेडिट भी बूस्ट होगा, कर्जा भी उतर जाएगा, आधे से ज्यादा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स भी इसमें माफ करवाए जा सकते हैं, या गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो गई, गाड़ी जो बैंक उठा के ले गया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, कोई 2-3 पेमेंट आपने मिस की, गाड़ी उठा कर ले गए, उसको रीपोजेस बोलते हैं. रीपोजेस हो गई है तो उसको भी नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं. और अगर गाड़ी टोटल हो गई है एक्सीडेंटल वजह से, या कोई खराब मैकेनिकल खराबी की वजह से टोटल डिक्लेयर कर दी गई, लेकिन लोन तो स्टिल आपको देना है क्योंकि इंश्योरेंस ने पूरा क्लेम नहीं दिया, उसको भी आप आधे से ज्यादा माफ करा सकते हैं. तो फिर देर ना कीजिए, जस्ट सिंपल कॉल कीजिए और आधा कर्जा अपना खत्म कीजिए. कॉल 1-888-888-9914 1-888-888-9914. और अगर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी राइट अवे 9167763555 9167763555. अगेन 9167763555. और यहाँ पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. नंबर ना लिख पाए हो तो फाइनेंशिया कॉल कीजिए, अच्छे से गाने की फरमाइश, और अपने दोस्त अमन का नंबर ले लीजिए.
0: थैंक यू सो मच अमन जी फॉर ज्वाइनिंग.
1: थैंक यू.

That was a beautiful song. जिन किसको पसंद नहीं है, सुभान अल्लाह. That was from ये जवानी है दीवानी. एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विथ योर ब्रेन्स. अपना कैमरा रोल खोलो. कितने स्क्रीन शॉट्स है जो अब किसी काम के नहीं है. रेस्टोरेंट मेन्यू, रैंडम कोड, फ्लाइट डिटेल फ्रॉम 2024, किसने भेजा हुआ एक मीम और 47 ब्लरी फोटोज एंड द सेम सनसेट. हम फोन्स को डिजिटल जंक ड्रॉअर बना देते हैं. तो आज का आफ्टरनून अड्डा के चैलेंज में 10 मिनट में डिलीट 50 यूजलेस स्क्रीनशॉट्स, अनफॉलो 5 अकाउंट्स जो आपको अननेसेसरीली कंपेयर करवाता है, और एक ऐसा कॉन्टैक्ट म्यूट करो जिसके मैसेजेस देख के ब्लड प्रेशर अननेसेसरीली बढ़ता है. लाइफ इंस्टेंटली चेंज नहीं होगी ऑब्वियसली, बट थोड़ा डिजिटल ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा. ट्राई करो एंड मुझे बताओ कितना जंक निकला है. दिस इज जस्ट अ ब्रेन एक्सरसाइज विच वी फील लाइक हाँ हमने ये तो कर दिया. एटलीस्ट रेडियो सुन के एक काम तो हो गया, अपने फ़ोन को क्लियर करना. अडल्टिंग के पार्ट में ये भी एक पार्ट है, क्योंकि बचपन में तो हमारे पास फ़ोन होते भी नहीं थे कि हम अच्छा ये निकालना है, इनको कॉल करना है, वो करना है, ये करना है. पर अब तो बड़े हो गए तो कर लो बॉस.

You are listening to the afternoon adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM पर. गाना बहुत धीरे था because it is that time in the afternoon जहाँ हम थोड़ा lunch करके घर पे TV देखते हुए relax होते हैं. I'm sorry, no offense to the office जो office में काम कर रहे हैं. मैं बस आपकी mid afternoon को थोड़ा slowly, थोड़ा धीरे से, थोड़ा अच्छे से लेके जाना चाहती हूँ. अब थोड़ा Bollywood के बारे में बात करते, but एक different गेम के साथ. हम मूवीज को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट कुछ फिल्म सीक्रेटली अडल्टिंग मैनुअल्स भी है. लाइक जिंदगी ना मिले दोबारा, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप बुक करने से पहले कैलेंडर अलाइन भी करना जरूरी होता है, विच वी फॉलो इन आर डेली लाइफ्स टू मेक आर कैलेंडर्स की इस दिन मैं ये कर रहा हूँ, उस दिन मैं वो कर रहा हूँ. एंड कमिंग टू अदर मूवीज लाइक वेक अप सिड, करियर का आंसर हर 22 साल के बर्थडे पे नहीं मिलता है. We get our answers when it's the right time to get it. हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं हमारे answers. And अगर I have to tell you another example, I can talk about the movie Queen. कभी कभी solo plan actually character development भी होता है. तो life आपकी क्या करंट बॉलीवुड चैप्टर में है, आप मुझे बताइए. इज इट वेक अप सिड वाला फेज, क्वीन वाला फेज, थ्री इडियट्स वाला कन्फ्यूजन, या फुल कभी कभी कभी खुशी कभी गम फैमिली ड्रामा. सॉन्ग के साथ अपना चैप्टर भी बताइए. वी आर ऑलवेज हियर टू लिसन ऑल दोज चैप्टर्स जहाँ हमें लगता है कि ओ या बॉलीवुड डज रूल इन आवर लाइफ्स समटाइम्स. सो इफ़ यू गाइज फील यू नो व्हाट फेज आई एम इन, आई थिंक वेक अप सिड, क्योंकि मुझे वही लगता है वही फेज में मैं चल रही हूँ करेंटली. सो आपकी कौन सी फेज है, आई एम एक्साइटेड टू लिसन. तो कॉल कीजिए और बताइए.

are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM पर हम अभी कर रहे हैं द अडल्ट फ्रेंडशिप ऑडिट. हम रिलेशनशिप को ऑडिट करते हैं लाइक फाइनेंसेस को ऑडिट करते हैं बट फ्रेंडशिप्स को नहीं. और फ्रेंडशिप्स में भी अडल्टिंग आ गई है. कुछ लोगों से मिलके आपको लगता है बैटरी 100% हो गई है और कुछ से मिलके लगता है बैटरी बस 2% ही बची है. तो एक सिंपल क्वेश्चन, आपकी लाइफ में वो बैटरी परसेंटेज बढ़ाने वाला फ्रेंड कौन है? नाम नहीं तो इनिशियल्स ही बोल दो मुझे, या बता दो कि ये फ्रेंड मुझे ही मेक्स मी फील सो कंप्लीट कि मैं इवन लाइक पूरा दिन काम से वापस आऊँ उनसे मिलना है तो आई एम ऑल रेडी फॉर इट. और एक ट्विस्ट, कभी कभी फ्रेंडशिप का लाइफ हैक है क्वांटिटी कम क्वालिटी बेटर. हर वीकेंड्स प्लान्स होना ज़रूरी नहीं है. एक दोस्त जो 3 महीने बाद भी कॉल उठा के बोलता है हाँ बोल क्या हुआ, दैट्स अ प्रीमियम मेंबरशिप गाइज. फ्री ट्रायल नहीं है, वो है दोस्ती. जो इवन इफ़ यू कॉल ईयरली वंस, इफ़ यू कॉल वेन एवर, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. दैट इज़ द मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप. Until then, I am playing the next track for you guys. Sunte rahiye Funisha 104.9 FM.

गिविंग यू द ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय कार या ट्रक एक्सीडेंट हुआ है या स्लिप एंड फॉल में इंजरी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी से डील करना स्ट्रेसफुल हो सकती है. अटॉर्नी उमर ख्वाजा आपके केस फाइट करते हैं और आपको वो कॉम्पेंसेशन भी दिलाते हैं. हेल्प कॉम्पेंसेशन में हेल्प भी करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज यू पे ओनली इफ यू विन. फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046 या विजिट करें attorneyumar.com. अटॉर्नी उमर ख्वाजा, योर फाइट एंड देयर कमिटमेंट.

चलिए एक कम्प्लीटली अनसीरियस बट इम्पॉर्टेंट रिसर्च करते हैं. इट इज़ नथिंग बहुत ज़्यादा रिसर्च, मतलब मैं साइंस में उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट आई एम गुड इन बॉलीवुड. सो बॉलीवुड सॉन्ग्स इज इक्वल्स टू आवर पर्सनैलिटी टेस्ट. आपको अगर अपनी करंट लाइफ को सिर्फ एक बॉलीवुड सॉन्ग से एक्सप्लेन करना हो तो क्या बजेगा? हाउ इज इट लाइक, एक एग्जाम्पल दू, आज की पार्टी लाइफ सॉर्टेड है, या इलाही रैंडम ट्रिप प्लान कर रहे हो, या मैं जिंदगी का साथ, जो होगा देखा जाएगा, या वो क्लासिक कैटेगरी जहाँ सॉन्ग कुछ भी हो बस आप हेडफोन्स लगा के दुनिया से डिसकनेक्टेड होना चाहते हैं. मुझे भी वो सॉन्ग्स बताओ जिसमें आपको लगता है दिस इज एग्जैक्टली माई मूड. वॉट इज योर आफ्टरनून मूड टूडे? वी स्टिल हैव 10 मिनट्स टू गो. तो आपकी आफ्टरनून मूड या आपकी आफ्टरनून की मूड के हिसाब से कौन सी सॉन्ग आपकी लाइफ को अभी सूट करती है? डोंट टेल ये सूट करती है कि व्हेन एम आई गोइंग होम आफ्टर द ऑफिस. कुछ बॉलीवुड ही बता दो.

साहेबा, जब बात हो लव और डायमंड्स की तो स्पार्कल तो बनती है, और इस सीजन तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स लेकर आया है अमेजिंग ऑफर्स। एंजॉय अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 18 कैरेट से ऊपर ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन। लिसन, जीरो डिडक्शन। तो अपने स्पेशल समवन के लिए हो या खुद के लिए, मेक इट टाइमलेस, मेक इट तनिष्क। विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को एंड सेलिब्रेट दिस सीजन with a little extra sparkle. Terms and conditions apply, but still 25% on diamonds, it's a great thing, so get going to Tanishq in Frisco.

अगस्त का महीना है, रक्षाबंधन ऑफिशियली आ रही है. इट्स ऑन अगस्त 28 एंड दिस रक्षाबंधन फनीशिया एंड चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत लेके आई है एक अच्छी सी खबर आपके लिए भाई और बहनों. बस हमें कॉल कीजिए एंड शेयर योर अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन एयर. बस आपको हमें कॉल करनी है 9722355555 पर एंड यू कैन विन वीकेंड्स इन चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत. यू हैव लाइक सो मेनी गिव अवेज कमिंग एंड यू हैव सो मेनी लाइक prizes like grand prizes and the unforgettable sibling reunion weekend at Chalked Out Casino and Resort. So why you wait? Bas call kijiye aur on air aapki most memorable thing hame bata dijiye and we are ready to listen and you can win these prizes at Chalked Out Casino and Resort Durant. And thank you for listening to me today, my last track for the day.

0: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
1: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
0: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
1: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
0: ये क्या होता?
1: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को,
5: डैलस। आर यू रेडी? जाबो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पनेशिया।
6: अजी सुनते हो?
7: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of tax planning, AG FinTechs, सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
13: Are you sun ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
17: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और जी 2:30 बजे से 5 बजे तक यानी कि 2:30 PM till 5 PM आई एम हियर विद यू एवरी डे मंडे थ्रू फ्राइडे और आपके साथ रहती हूं आपके इस आफ्टरनून ड्राइव टाइम में. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आज है मंडे एंड मंडेज इज ऑलवेज डेडिकेटेड टू यू On your afternoon drive time with Sunehri Kiran. हर रोज एक नया फ्लेवर आता है. Mondays का फ्लेवर is only you. पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, आपकी मनपसंद आरजे के साथ. सो कोई गाना सुनना है 90s onwards, ये मेरी रिक्वेस्ट है. कॉल कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए. कोई बात शेयर करनी है, किसी से कोई बात दिल की कहनी है, कोई और मैसेज कन्वे करना है, आई एम ऑल ears.

And if you are looking for some financial strategies, तो जी My Time Equity led by CPA Sudhir Pai आपको help करते हैं individuals as well as the whole family build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities और साथ ही साथ alternative investments. तो चाहे आप long term wealth plan कर रहे हों, retirement planning कर रहे हों, या फिर आप अपनी investments growing करना चाहते हों, उनकी growth चाहते हों, My Time Equity offer करता है आपको personalized solutions जो कि आपकी needs, आपके goals और आपके concerns के इर्द गिर्द design किया जाता है. तो My Time Equity को call की कोई भी आपके जहन में सवाल है, देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग एंड आस्किंग योर क्वेश्चन. दैट नंबर इज 4697021272 इज द नंबर, या फिर mytimeequity.com पे लॉग ऑन कीजिए. लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर देयर. दिस इज फाइनेंशियल रेडियो, आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम में फिल्मी फरमाइश, यानी कि आपकी पसंद आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे चल रही है. मंडेज इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9722355555 और कर सकते हैं 90s ऑनवर्ड्स कोई भी गाना रिक्वेस्ट. अर्चना, दिस इज फॉर यू.

जी हाँ, सुन रहे थे आप थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक से ये गाना, और इसमें हमें नज़र आई थी जी सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, ऋषि कपूर, अमीशा पटेल, और बहुत ही पॉपुलर ये चंद एक गाने थे जो आप इसके सुन रहे थे. कुणाल कोहली ने किया था इस फिल्म को डायरेक्ट. आगे बढ़ रहे हैं जी, और रिक्वेस्ट प्ले कर रही हूँ शिवानी की. शिवानी, जो आपने गाना पिया बसंती एल्बम से बताया था, आई ट्राइड लुकिंग दैट सॉन्ग अप, मुझे मिला नहीं वो गाना, लेकिन पिया बसंती का जो मेन टाइटल ट्रैक है वो मैं आपके लिए जरूर प्ले कर सकती हूँ. सो दिस वन इज गोइंग आउट टू यू. आप भी अपनी कोई मैसेज किसी को रिले करना चाहते हैं, किसी को कोई और बात कहना चाहते हैं, या खुद अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं कोई खूबसूरत सा गाना सुनकर खुद के लिए, तो जरूर कॉल कीजिए 972-235-5555.

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. सबसे पहले आपकी हेल्थ, उसके बाद डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, और बहुत सारी सिचुएशंस की निटिग्रिटीज होती हैं जो हमें एज रेगुलर पीपल कई बार मालूम भी नहीं होती. दैट इज वाई वी नीड एन अटर्नी ऑन आवर साइड जो कि हमारी तरफ से इन तमाम चीजों का ख्याल रखे. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी Umar Khwaja. Not only attorney Umar Khwaja and his team will help you fight your case, balki they will get you the best compensation that you deserve. Aur sabse behtareen baat ye hai ki you don't have to pay anything until you win the case. To aapke liye ye ek win-win situation hai. Zarur aap attorney Umar Khwaja se contact kijiye free consultation ke liye. Kisi situation se is tarah ki aap guzar rahe hain, their team is always willing to help you. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number. Ya phir aap unki website visit kijiye to find out more information and book your consultation. That is Attorney Umar, O-M-A-R, attorneyumar.com. And this next song is going out to Safi, taken from the movie Fana, Aamir Khan and Kajol.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं मिला? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
9: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
9: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
9: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
7: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia, 104.9 FM.

0: tracks that put you on the right track.
1: You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Aapki pasand chal rahi hai, aapke man pasand radio station pe. This is Fun Asia aur afternoon drive time main lekar aati hoon aapke liye every Monday through Friday. 2:30 से 5 तक आपके साथ मौजूद रहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन दिस आफ्टरनून. आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं फिल्मी फरमाइश सेगमेंट में. पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. कॉल करिए और अपनी पसंद का गाना 90s ऑनवर्ड्स, दैट इज माय रिक्वेस्ट. 90s से ऑनवर्ड्स का गाना प्ले करना है या रिक्वेस्ट करना है आपने. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय IRAG फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स है जी ये US में. This is AG Fintechs. Whether you're an individual, या फिर आपका अपना startup है, या फिर आप established business रखते हैं, AG Fintechs offer करता है innovative financial solutions जो कि आपकी requirements के इर्द-गिर्द tailor किए जाते हैं. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, और उसके साथ business advisory services भी. AG Fintechs helps you keep your finances organized, compliant and future ready. Trusted hain, efficient hain, unko apna partner banaiye in building a strong financial future. Ye sari baat sunkar aapke zehen mein koi bhi sawal aaya hai, to give them a call. They are just a phone call away. That number is 469-942-9888. 469-942-9888. Or you can visit their website, which is AG Fintechs, FINTAX, AGFintechs.com.

श्रेया घोषाल और श्री राम की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना. वैसे बड़ा डिफरेंट देन वो शुरू में जब श्रेया घोषाल बिल्कुल ही मीठे मीठे गाने गाती थी और इस तरह के गाने बड़े डिफरेंट लगते थे. लगता नहीं था कि श्रेया की आवाज़ है, बट श्रेया हैज़ रियली एंटर्ड इनटू ऑल द जॉनर्स और हर तरह का गाना वो गाती हैं और क्या कमाल गाती हैं. दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. अगला गाना मैं प्ले कर रही हूँ हिरेन की रिक्वेस्ट पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हिरेन हैज़ रिक्वेस्टेड फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान. हिरेन आपके लिए प्ले कर रही हूं और तमाम लोगों के लिए जिन्हें भर दो झोली बहुत ज्यादा प्यारा लगता है अदनान समी की आवाज में. उससे पहले आपको बताएं 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली सर्व कर रहा है कम्युनिटी को और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल. दिस इज LUNOXY Lenoxy Medical. अगर आप सर्च करना चाहें, founded by Dr. Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-rays, CT scan, cardiac diagnostics, as well as Himalayan Med Spa Services. तो अब आपको जो कुछ भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेंगी. ऐसा नहीं कि आपको CT स्कैन के लिए कहीं और जाना है, एक्सरे के लिए कहीं और जाना है. एवरीथिंग एट Lenoxy Medical अंडर वन रूफ. ओपन 7 days a week from 8 AM to 8 PM. तो आप इन सातों दिन आ सकते हैं और कोई अपॉइंटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है. दिस इज एब्सोल्यूटली वॉक इन एनी टाइम. Lenoxy Medical, दिस इज टेक्सास Primary Care, located in Frisco.

बजरंगी भाईजान से लिया गया ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे हिरेन की रिक्वेस्ट पे, और अब सीधा लेके जाती हूँ आपको अमीन साहब की रिक्वेस्ट पे विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी विजय. विजय एक बड़ी ही मज़े की फिल्म थी. बहुत सारी कहानियाँ इस मूवी में एक साथ कनेक्टेड थी. किसी के नाना होते हैं तो किसी के दादा होते हैं, वही एक पर्सनैलिटी, और वो सारी फैमिली किस तरह यू नो सेपरेटेड होती है और किस तरह से उनके दरमियान लड़ाइयाँ चल रही होती हैं. बिजनेस का मसला, खानदान का मसला, पैसों के मसले, एंड देन एवरीथिंग इज निटेड टुगेदर. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी फिल्म विजय वॉज. ऋषि कपूर, सोनम थी, मीनाक्षी थी, अनिल कपूर थे, और राजेश खन्ना साहब थे इसमें, हेमा मालिनी थी. व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी. बहुत खूबसूरत आपने अमीन साहब मुझे ये मूवी याद दिलाई है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी विजय.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, modern mangal sutra dhoonte thak gayi hoon.
3: To carrot clean chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern mangal sutras.
2: Seriously? Kaisa collection hai?
3: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
4: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco, next to Tanishq.
5: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज थ्री ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: डूड, इट्स पेज थ्री। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज थ्री ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today. तारा वो तारा
1: हर तारा। अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
5: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
6: ओ हाँ, ये तो अलग है।
0: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
8: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. फानीजर रेडियो सुन रहे हैं आप. 104.9 FM इज द प्लेस वेयर यू नीड टू बी, क्योंकि मैं लेके आई हूँ अब आपके लिए एक गिव अवे. और गिव अवे आया है मिराज लाउंज की तरफ से. सबसे पहले तो आपको ये बताऊं जी कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ और समथिंग एक्साइटिंग, अपने रेगुलर से हट के कुछ और ढूंढ रहे हैं, तो देन मिराज लाउंज इज अ प्लेस फॉर यू. एंजॉय प्रीमियम हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स हैं, हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स हैं, लाइव म्यूजिक होता है और सबसे स्पेशल एक्साइटिंग डीजे नाइट्स होती हैं. और यही नहीं बल्कि लेडीज नाइट और कॉलेज नाइट भी अरेंज करते हैं वो लोग. सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन दिस प्लेस इज फॉर यू टू गो. डेफिनेटली चेक आउट व्हेन इज देयर नेक्स्ट कॉलेज नाइट. और हैप्पी आवर चलता है उनका मंडे थ्रू थर्सडे 11 AM to 6 PM. तो मुझे लगता है कि हैप्पी आवर से ज्यादा पूरा हैप्पी दिन ही चलता रहता है. फीचरिंग हुकर स्टार्टिंग एट 24.99 जबकि शॉट्स आर ओनली फॉर 4.99. तो मिराज लाउंज में आपको मिलेगा सब कुछ अंडर वन रूफ. दे आर लोकेटेड वेयर, यही तो सवाल है, ये आपने मुझे बताना है. क्योंकि मैं दो विनर्स को देने वाली हूं क्या $20 ऑफ विद मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. तो आप जाइएगा मिराज लाउंज, इट इज डाइन इन ओनली. मिराज लाउंज जाइए, अगर आपका $50 का बिल बनता है तो $20 आपको ऑफ मिल जाएंगे. दैट्स अबाउट 40%, दैट्स अ वेरी गुड डील. तो मुझे कॉल करके बताइए मिराज लाउंज की पूरा स्ट्रीट एड्रेस. मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, दे आर लोकेटेड इन मिकनी. बस ये मेरी हिंट है. अब आपको मुझे स्ट्रीट एड्रेस बताना है पूरा और जीत लेना है ये $20 ऑफ द मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 एट मिराज लाउंज. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

All right, जी, मिराज लाउंज की तरफ से ये गिव अवे आपके लिए आया था, $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और आपसे मैंने पूछा था मिराज लाउंज जो कि मेकिनी में लोकेटेड है उसका फुल एड्रेस मुझे बता दीजिए. तो सबसे पहले तो आप तमाम लोग फुल एड्रेस नोट कर लीजिए, बिकॉज आपको मिराज लाउंज जाने के लिए एड्रेस तो डेफिनेटली चाहिए. दैट एड्रेस इज 3750 मेकिनी रैंच पार्कवे स्वीट 100 मेकिनी टेक्सस 75070. ये है जी मिराज लाउंज का कंप्लीट एड्रेस. उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए miraj lounge.com टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर मेन्यूज एंड एवरीथिंग. और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. और हमारे जो आज के मैंने दो लकी विनर्स पिक करने थे, तो हमारे जो लकी विनर्स हैं वो हैं जी जिग्ना पटेल एज वेल एज प्रतीक खुराना. जिग्ना एंड प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. आप हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर मिराज लाउंज पे पहुंचाने का, एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड क्लेम योर प्राइज. दैट इज $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. वंस अगेन, दैट इज जिग्ना एंड प्रतीक. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैं विनर सेलेक्ट नहीं करती, मैं मैथ के फॉर्मूले में एक नंबर्स डालती हूँ जिस सीक्वेंस में आपका कॉल आती है, और जो लकी विनर्स होते हैं वो आपकी लक खुद डिसाइड करती है. तो अगर जिनका नाम नहीं आता, मैं यू नो एडवांस में आपसे माजरत कि वो आपकी लक नहीं थी, आज जीत नहीं पाए. बस somebody has to win and somebody has to lose, but आपकी पार्टिसिपेशन is what makes me a winner. Thank you so much for participating as always.

इतने प्यारे प्यारे गाने आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लवली म्यूजिक दैट यू गाइज आर रिक्वेस्टिंग. मंडे है आज, फिल्मी फरमाइश चल रहा है आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे 4:30 बजे तक मंडेज को लेकर आती हूँ. बिकॉज 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं अटर्नी संजय माथुर ऑफ माथुर लॉ ऑफिसेज, जो आपके क्वेश्चन लाइव लेते हैं. यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इमिग्रेशन, सिविल लिटिगेशन, फैमिली लॉ, कोई भी आपका सवाल है, क्रिमिनल या फिर इंजरी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया एंड आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम अटर्नी संजय माथुर. दैट सेगमेंट विल कम एट 4:30 PM. फ्रॉम 4:30 till 5 PM ही विल बी हियर विद अस. और अब अगला गाना, खूबसूरत गाना रिक्वेस्ट किया है आदिल ने. आदिल, थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग. बट बिफोर आई मूव ऑन टू दिस नंबर, आई मस्ट टेल यू ऑल, स्पेशली टू द बिजनेस ओनर्स, टेक्सस के बिजनेस ओनर्स के लिए ये खास ऑफर है जी. अगर आप ढूंढ रहे हैं स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज द प्लेस वेयर यू नीड टू चेकआउट. प्राउडली सर्व कर रहे हैं तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सस बिजनेसेस को सिंस 2002. कंपेटिटिव रेट्स, दे हैव रिलायबल सर्विस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स फॉर यू बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, योर नीड्स, योर कंसर्न्स. तो आप तारा एनर्जी को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 844-428-2800. 844-428-2800 उनका नंबर है. या फिर आप तारा एनर्जी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. दैट वेबसाइट इज, देखिए जी, वेबसाइट का मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ. दैट इज taraenergy.com. वंस अगेन, दैट इज tara energy.com.

एंड इफ योर चाइल्ड इज अ थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेडर तो मैं आपको बताऊं जी कि नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी कैन हेल्प योर चाइल्ड बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दैट दे विल यूज फॉर अ लाइफ टाइम. Created by experienced coaches Sunhi, Simon Santiago, and Audra Langston, they are the people who have mentored debate champions, valedictorians, and Ivy League graduates. And this online program is designed to help your young minds grow into confident leaders. So if you want to learn more, find out more information about Next Gen Speaker Academy, then log on to their website, which is nextgenspeakersacademy.com. या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड 214-724-2867. दैट इज 214-724-2867. दैट इज नेक्स्ट जेन अकेडमी फॉर यू. गिव योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस टू लीड टुमारो स्टार्टिंग टुडे विद नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
0: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
14: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
15: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
14: Fear not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
17: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. और जी आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि रक्षाबंधन आ रहा है ऑफ कोर्स, और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पे फाइनेंशियल रेडियो और चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट वांट्स टू हेयर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग. और ये शेयर करने से आपको क्या मिलने वाला है जी, एक्साइटिंग डेली प्राइजेस आप जीत सकते हैं, इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट एज वेल एज रिसॉर्ट स्टेज. एंड यू कैन ऑल्सो be the grand prize winner jo hai unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपना 1 मिनट यानी कि 60 seconds का एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, शेयरिंग योर मेमोरी, समथिंग ब्यूटिफुल और अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो आपकी है आपके भाई आपकी बहन के साथ, और उसको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 214-837-7147. 214-837-7147 पे व्हाट्सएप कीजिए अपनी इस 1 मिनट के वॉइस नोट को, एंड यू कैन एंटर ऑटोमेटिकली इनटू दीज डेली प्राइजेस एज वेल एज फॉर द ग्रैंड प्राइज विन. कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगे फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे. सो अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया तो इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट फॉलोइंग अस. और इसी के साथ चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, ये वो जगह है जहां यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, एंड यू मस्ट बी 21 ईयर्स और older to participate, terms and conditions apply, so please play responsibly. और मैं आपको ये मौका दे रही हूँ, अगर आपको कोई ऐसी अनफॉरगेटेबल मेमोरी मेरे साथ यहाँ ऑन एयर शेयर करनी है तो 972-235-5555 पे कॉल कीजिए. 1 मिनट में मुझे जल्दी से शेयर कीजिए अपनी मेमोरी एंड आई कैन सेंड योर एंट्री डायरेक्टली टू चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट. और बाद में ये बात कर रही थी तो मैंने उस दिन मेरी नज़र से यश वर्मा की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत बहन भाई के रिलेशनशिप पे गाना गुजरा. अपनी बहन की एंगेजमेंट पे ही एक्चुअली संग दिस सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट टू हिज सिस्टर. And what a beautiful song it is. Like, if you have a brother or you have a sister, you are definitely going to like this song. Lekin usse pehle, we have a live caller, Fanesha Radio. You are live on air. Do you have a memory to share?
1: Yes, main ji Saida bol rahi hu. Wo meri badi behan thi. Wo kapde bhi seeti thi. Unko dekh dekh ke main bhi bahut inspire hoti thi. Fir maine unko Eid ka din aata tha. तो सबके कपड़े सिल रहे हैं, मैं इंतजार में खड़ी हूँ मेरा कब सिलेगा, सबसे आखिर में मेरा फ्रॉक सिला. तो वो चीज याद है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी. इतने सारे लोग उनको दे देते थे हमारे कपड़े सियो से. मैंने सीना से सीख लिया फिर बाद में.
0: परफेक्ट सईदा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. आपका मैं नंबर अभी नोट करती हूँ, आप प्लीज ऑफ एयर मेरा वेट कीजिए, आई एम गोइंग टू टेक यू ऑफ एयर राइट नाउ. अच्छा जी, थैंक यू सईदा जी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल मेमोरी, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉरवर्ड योर मेमोरी टू चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट. तो मैं आपको बता रही थी, अगर आपका बहन है या आपके भाई हैं तो आप इस गाने को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं. दिस इज जस्ट सो हार्ट वार्मिंग.

0: And we have another caller, Fun Asia Radio. You are live on air. What is your name?
1: Richa.
0: Hi, Richa. Bataiye. Share your memory with us, please.
1: तो ये बहुत बहुत बहुत पुरानी बात है. मैं एट्थ क्लास में नहीं, मैं 8 साल की होंगी और मेरी सिस्टर मेरे से 6 साल बड़ी है तो वो 14 की होंगी. एक बार कहीं मम्मी पापा को पार्टी में जाना था. हमने कह दिया आप जाइए, हम लोग घर पर रुकेंगे. मम्मी पापा चले गए, हमने टेप रिकॉर्डर पे कैसेट लगाया, गानों पे नाचे और बेड पे कूद कूद के नाच रहे थे और तभी ठक करके आवाज आई. तो हमें रियलाइज हुआ कि बेड के नीचे की एक पट्टी हमने तोड़ दी है और हम दोनों बहनों ने ये प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी और हम कभी किसी को नहीं बताएंगे. तो ये आज आपको पहली बार बात पता चल रही है कि हमने ऐसा कुछ किया था.
0: That is lovely, beautiful memory जो आपने. तो बाद में वो बिस्तर मतलब पेरेंट्स को कभी पता लगा कि वो टूटा था?
1: पता चला है क्योंकि हम वहाँ से मूव कर रहे थे, हम दूसरी जगह जा रहे थे तो वी वर यू नो सेलिंग ऑफ आर फर्नीचर. तो जो वो बेड बिक रहा था तो नीचे की पट्टी टूटी हुई, तो हम तो एक मासूम बच्चे की तरह अरे ये कब हुआ पापा, ये तो पता ही नहीं चला कब टूट गया करके हमने बात रफा दफा कर दी. बट उन्हें आज तक नहीं पता कि हम नाचे थे कूदे थे इसलिए वो टूटी थी.
0: That is awesome. Thank you, Richa, for sharing that beautiful memory with us. Keep listening and thank you so much. ये बहुत ही खूबसूरत memory Richa share कर रही थी हमारे साथ और आगे बढ़ रही हैं जी एक खूबसूरत से गाने के साथ. We are going to move forward and I'm going to cover the weather, traffic as well as currency update for you because 4:30 हमारे साथ connected होंगे attorney Sanjay Mathur.

जी हाँ, ऋचा की और उनकी बहन की कहानी सुन के मुझे ये गाना याद आ गया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना टशन है। और बहुत ही मजे की उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। इसी तरह का हर रोज आपके साथ जो है आपकी मेमोरी शेयर करती हूँ, सो थैंक यू सो मच ऋचा एंड सईदा जी फॉर शेयरिंग योर मेमोरीज। और अब आगे बढ़ रहे हैं जी, मैं आपको बताने वाली हूँ एक जबरदस्त इवेंट का जो कि आ रहा है डालस में, और बिल्कुल तैयार हो जाइए इस स्पेक्टेक्युलर सेलिब्रेशन के लिए। द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस लेकर आ रहे हैं आपके लिए कायद मेला 2026। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज कल्चर एज वेल एज द इंटायर कम्युनिटी। आइए और एंजॉय कीजिए। लाइव म्यूजिक होगा, खाना बेहतरीन डिलिशियस फूड वहां पे मौजूद है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो शॉपिंग के बेतहाशा चीजें और स्टॉल्स वहां पे लगे होंगे, साथ ही साथ कल्चरल फेस्टिविटीज आपके लिए हो रही होंगी। सो इट इज ऑल इन ऑल अ फैमिली फन फॉर ऑल एजेस। सो व्हेन इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट द 22nd, और 3 बजे से लेके रात 11:45 तक, यानी कि 12:15 बजे तक ये इवेंट जारी रहेगा एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सस। डोर्स विल ओपन एट 2 PM। सो 2 बजे से आना शुरू कर दीजिए और बी द फर्स्ट वंस टू एंजॉय द शॉपिंग एज वेल एज कल्चरल फेस्टिविटीज और खाना पीना, मतलब सब कुछ होगा वहां पे। और बेस्ट पार्ट अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, और बेस्ट पार्ट ये है कि एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री है। आपको कोई टिकट नहीं खरीदना, आपको कोई पार्किंग नहीं खरीदनी। सो आइए, बस ऑल यू हैव टू डू इज बस आना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आके एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है कायद मेला 2026। ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस, दैट इज PSNT, एंड प्राउड मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट इज फन एशिया 104.9 FM। और एक बात और आपको बताती चलूं कि म्यूजिक में रागा बॉयज आर कमिंग। रागा बॉयज कौन है फॉरन सर्च कीजिए, डेफिनेटली आपने रागा बॉयज को सुना होगा। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर्स आजकल की जनरेशन के, स्पेशली एवरीबडी लव्स रागा बॉयज। सो यू वांट टू बी देयर, यू डोंट वांट टू मिस द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज बाय रागा बॉयज। दैट इज PSNT's कायद मेला 2026।

इम्पोर्टेंट सनराइज आज का हुआ 6:50 सुबह 6:50 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 8:10। और इसी के साथ मैं देती हूं आपको करेंसी अपडेट बिफोर वी रैप अप। आज US डॉलर कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो यूरो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 0.86 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.73, इंडियन रुपी 95.69 पे स्टैंड कर रहा है, कैनेडियन डॉलर 1.38, जबकि पाकिस्तानी रुपी इज ट्रेडिंग एट 277.56 विद रिस्पेक्ट टू 1 US डॉलर, नेपालीज रुपी 153.19, जबकि बांग्लादेशी टका 122.70 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर। एंड विद दैट ये लास्ट रिक्वेस्ट, हमारा जो आज का रिक्वेस्ट सेगमेंट होता है फिल्मी फरमाइश, जो आपकी पसंद के गाने प्ले होते हैं आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, उसका आखिरी गाना दुरे काजी की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही हूँ। विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल एंटर इनटू आवर लाइव सेगमेंट विद अटर्नी माथुर, संजय माथुर विद द माथुर लॉ ऑफिसर्स। ही विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव। इफ आई पुट यू ऑन होल्ड एंड यू कैन हियर हिम, दैट मींस यू आर नेक्स्ट इन लाइन। डू नॉट ड्रॉप योर कॉल।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
3: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
3: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: आई एम सो स्ट्रेस्ड. क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स. व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
7: कुछ भी नहीं. उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस.
6: क्या मतलब?
7: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स.
6: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
9: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
10: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
11: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया.
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
14: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
15: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं.
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं.
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं.
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
18: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
19: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
21: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
12: वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
20: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
21: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
22: मैं हीरो।
23: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Tanwadi Sanni Sanskari ki Tulsi Kumari was the name of the movie. Janvi Varun, and this part of the show is brought to you by AG Fintax. If you've not done your taxes yet, the masters are here for you. AGFintax.com. If you're late, back taxes, payrolls, everything that you think taxes, they are the masters. AGFintax.com.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
0: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनकी जिम्मेदारी.
2: होचो.
3: इट्स होको.
4: अरे बस भी करो यार.
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
5: अरे यार, घर मिल गया.
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
0: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: Your dream home may be closer than you think with a Dream Home Mortgage. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families across the country turn homeownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. Licensed in all 50 states, unka experience team hai ji jo committed hai to finding the right loan option tailored to fit your needs. And whether you're buying your first home, upgrading or refinancing, they can help you with all of that. Start your journey of home ownership with confidence today. 972-245-5626 or the website gives you more information. DreamHomeMortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dreams happen. We're going to head to a short commercial break. Aap kahin mat jayega kyunki kuch aur pyara sa music to lined up hai. Some giveaways are coming up as well. And you know, history, they say, repeats itself and history never lies. और हिस्ट्री इतिहास गवाह है कि एग्जामिनेशन हॉल में ना जब भी आप कहीं बैठे हो जो साथ में लड़की बैठी होती है ना वो आपको भैया कहकर कभी नहीं बुलाएगी. समझ रहे हो ना? एक्सक्यूज मी बोलेगी. एक्सक्यूज मी क्वेश्चन 4 पार्ट बी.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2770.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: तारा वो तारा हर तारा.
5: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
8: Dad, property papers कहाँ हैं?
9: Laptop में.
8: Investment?
9: Google Drive.
8: Insurance? Passwords?
9: बेटा don't worry, मुझे सब पता है.
8: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
10: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 minute वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
5: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांड, वेयर
2: unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
12: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
13: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary aawaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 2148692668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.

0: Alright, let's see who do we have with us on Fun Asia Radio. मैंने पूछा था जी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जी टाइगर श्रॉफ की एंड द मूवी वॉज कॉल्ड मुन्ना माइकल. 2017 में फिल्म आई थी, उसमें जो लेडी थी जी उनको मिला था एक्चुअली ज़ीसन अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू इन द ईयर 2017 एंड आई वॉन्टेड टू नो हर नेम. नाउ याद रखिएगा कि अगर आप मुझे जवाब देंगे तो आपको फन पिज्जा किचन जो कि 121 एंड कस्टर पे है उसका ये गिव अवे है. यू हैव टू बी एबल टू गो देयर. गुड इवनिंग टू यू. फन एशिया रेडियो वॉल्यूम कम कर लीजिए अपना, बढ़ा लीजिए, अदरवाइज अगले डब्बे में घुसना पड़ेगा. गुड इवनिंग.
1: हाँ जी,
0: हाँ जी बताइए जी. गुड इवनिंग
1: निधि अग्रवाल.
0: आपका नाम क्या है निधि अग्रवाल? तो ठीक है.
1: मंजुला.
0: मंजुला जी कैसी हैं? सब ठीक है?
1: हाँ जी ठीक ठाक, सब अच्छा.
0: मंजुला यू कैन गो टू फन पिज्जा किचन 121 एंड कस्टर.
1: आई कैन.
0: यू कैन. फिर आप जीत गए हैं जी, मुबारक हो आपको. इट इज निधि अग्रवाल. Stay on the line, don't hang up that phone. I'll take your details off the air. But this is definitely the lady I was looking for. Nidhi Agarwal, Indian actress, jinhone Telugu aur Tamil filmon mein zyada kaam kiya. Miss Diva Universe bani thi 2014 mein, actually bani nahi thi, participate kiya tha. But phir pehla Hindi debut aaya tha Munna Michael 2017. Uske liye jaise maine kaha Zee Cine Award for Best Female Actress. Uske baad debut aaya tha Telugu filmon mein with the movie Swai Sachi 2018. Tamil debut with Eeswaran in 2021. For that, she received a Sima Award for Best Female Debut Telugu nominations as well. Today, we wish her a very happy birthday from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas, Marvin Das. It is a very happy birthday to this beautiful young talent, Nidhi Agarwal. With that, taking you to a beautiful number, jo ki jitna marzi sun lo yaar, ye kabhi purana hota hi nahi gana. And I don't think so ki aisa koi banda hoga jo is gaane ko kabhi change karega. So, I'm going to play a lovely number for you. So that your drive time becomes much more joyful, man. Here we go with the song that everybody just happens to love.

Absolutely, Bindas Bolo Ji, Naam Marvindas Bolo. Welcome back on the 6 o'clock hour of your evening drive time show, only on Fun Asia Radio. 104.9 FM, bringing the community together. This part of the show is a good news for all of you that live in Grand Prairie, Arlington, Mansfield area. Bahut sari killat thi ji wahan grocery store ke liye, achhe grocery store ke liye. And you had to drive miles and miles, jaise aapke baap dada cycle pe kai course pedal, matlab cycle pe jaya karte the, aur 3-4 logon ko bitha ke cycle kiya karte the. और हम गाड़ी में भी जाने से इतना कतराते हैं यार, बट आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. गर्मी हो या सर्दी, आपके बिल्कुल पास आ चुका है हिमालयन बाजार, विच इज राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 360 एंड हाईवे 20. इट्स एट 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड, दैट्स इन ग्रैंड प्रेरी फॉर यू. चाहे हो जी फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरी डे असेंशियल, साउथ एशियन कम्युनिटी का ऑथेंटिक ग्रोसरी स्टोर. इंजॉय हॉट समोसा, पानी पूरी, मसाला चाय एंड कॉफी while you shop. जी हाँ, शाम को अगर आप जाएंगे, you'll see hot samosas, पानी पूरी, मसाला चाय, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा जी, which is piping hot and fresh, competitive prices, free delivery if you live within a 5-mile radius. So Google कर लीजिए भाभी, if you are in a 5-mile radius, $50 off मिलेंगे आपको. $50 की ग्रोसरी जो है absolutely free आएगी आपके पास, no delivery fee. Let me correct myself, free delivery fee on any order that is $50 or more. And every dollar still gets you a point. That means if you get to 100 points, you get $5 off. That's 5%. Chale, baatein baad mein, kaam zyada. I'm going to take you a little back with this movie, jiska mujhe lagta hai remake banna chahiye. Aur baakiyon ka ban raha hai, iska kyun nahi banega?

0: One very epic movie of its time, Gupta was the name of this movie. 1997, July 4th, ko ye release hui thi. The Hidden Truth was the tagline of this one. A landmark Bollywood suspense thriller film directed by Rajiv Rai, starring Bobby Deol, Kajol and Manisha Koirala. The film became a massive box office success and broke cinematic ground by casting a female lead in a dark, psychologic, negative role. And I personally bahut maza aaya tha is film ko dekhne ke liye. I went twice and jab dusri baar main theater mein tha, तो जब इंटरवल हुआ तो एज़ यूजुअल मस्ती करते करते मैं अब निकल रहे थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, एंड जैसे ही निकल रहे थे मैंने बोला हाँ यार हाँ तुझे नहीं पता काजोल नहीं मारे यार सबको, तो यार जस्ट स्पॉइल द फन फॉर अदर्स, बट क्या करें, कभी ना कभी जो अपना बचपन है उसको याद करना चाहिए यार. सम नॉटी स्टफ वी डिड, बट हैप्पी फॉर इंडिया. इंडिया इज लीडिंग द फर्स्ट टेस्ट बाय ट्रेलिंग श्रीलंका 478 runs in the first inning. India made 462 and usme leading score raha. Agar India ki baat karun to Devdutt Padikkal 167 of 230, KL Rahul 82, taking the total to 462. Sri Lanka all out for 284.
1: Kahan gaya, kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
8: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
9: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
10: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
10: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

सेना माटे नथी सरजाणो। अरे खारवो खलासी तो ई केवाय के जे फणीधर नाग जेवा दरियानी हामे उतरे अने उतरवू पड़े कारण के किनारे तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने नाना एवा सपनानी रे।

भाई हमारे पंजाब में कहते हैं गोदी लो, जब बच्चा री ज्यादा कर रहा होता है तो बोलते हैं गोदी ले लो यार, इसको गोदी ले लो। गिलासी मुझे समझ आया, वो हमारे शाम में काम आती है, पर स्टील का गिलास जो है वो बच्चे भी काम कर सकते हैं और बड़े भी काम कर सकते हैं। वो जो कांच की गिलासी होती है वो शाम को ज्यादा हमारे पंजाब साइड पे उसको यूज करने के लिए रियायत है। जनाब, यू आर वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो 6:27 आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आई एम बैक टुडे इन द ईयर 2008 एट द ओलंपिक्स इन बीजिंग। अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स हेल्प्ड द टीम विन 4x100 meter रिले, दैट इज 4x200 meter मेडले रिले, बिकमिंग द फर्स्ट एथलीट टू विन 8 medals एट द सिंगल गेम्स, एंड दैट वॉज a record by Michael Phelps which has still not been broken. 8 medal jeete thi ek hi games mein, and that was at the Olympics in Beijing in 2008. A little part of history there for you. History ki baat chodo ji, present mein kya chal raha hai? Doctor ke paas jaate ho, apna regular checkup karwate ho ki abhi wohi befikri chal rahi hai, kar lenge, ho jayega, hame kya hona hai? Sochna to acha hai bhai, but aapki sehat, aapki health aapke haath mein hai, and it's not just you do it for yourself. Aisa nahi hai, aapko sirf aapki health apne liye achhi nahi rakhni, but your, jisko aap kehte ho na ki meri biwi main uske bina nahi jee sakta, mere bacche unke bina nahi jee sakta, your family, so aapko उनके लिए फिट रहना है। एंड देयर इज अ प्लेस पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंड दे विल मेक श्योर दैट दे स्पेंड 30 मिनट्स विद यू। नहीं जी, ये कोई वो दूसरा क्लिनिक नहीं है जहाँ पे आप जाएंगे, आपको 5 मिनट के लिए देखा जाएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स प्रॉपरली, बट दिस टाइम व्हेन यू गो टू पैशन हेल्थ दे विल मेक श्योर दे टेक 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग समवन takes time. Passion Health, you're not just a patient, you are like their family. For you, your family, and for the health of the community, Passion Health Primary Care, 30 minutes is all it takes to complete your annual physical. Ab ye mat sochiyega pata nahi mere ghar se kitni dur hoga, are bhai multiple locations in DFW, I'm sure there's one in your city. Chahe ho annual physical, anxiety care, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more are available at Passion Health. Make sure to have that in your list. If you haven't had a PCP yet, you have to go with Passion Health Primary Care because of the way they do things, man. 30 minutes ka time kaun deta hai aajkal ke time mein? Aap bhi nahi dete unko, doctor to phir bhi de raha hai. That's Passion Health Primary Care.

0: कौन है?
1: वो उस हिरानी होटल वाले का भाई
2: और दूसरा सोशल वर्कर।
0: तो फिर क्या किया तूने?
1: हमने हमने मारा उसे।
0: मार दिया ना? अच्छा किया।
2: मारा नहीं, मारा लेकिन जान से नहीं मारा।
0: तो जा मार, जान से मार।
2: रानी भाई आज के पिटाई के बाद वो कुछ नहीं करेगा। हाँ
1: हाँ और फिर रानी भाई 1500 रुपए की तो बात है।
2: हाँ
3: The voice of Sharad Saxena is what you heard just now because he's also celebrating his birthday today, 17th of August, 1950 mein ka janam hua. He's 76, but even till date, he keeps a very strict regime for his exercise and makes sure that he stays fit. English, Telugu, Malayalam, Tamil, kai filmon mein kaam kiya. More than 250 films he's acted in and started his career in the early 1970s. Picture aayi thi jaise ki Mr. India. पिक्चरें कहने में मज़ा आता है यार, फिल्में नहीं, मतलब पिक्चरें आई थी जैसे कि मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, घायल खिलाड़ी, गुलाम विच इज़ वन रोल दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, गुप्त में नजर आए थे, डुप्लीकेट में आए सोल्जर, फना, क्रिश, मैनी मोर, एंड टुडे वी आर विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी, आज के दिन 76 बर्थडे, 17th of August 1950, वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर शरद सक्सेना। एंड दिस बर्थडे शाउट आउट इज कमिंग फ्रॉम श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस, टाइमलेस ब्यूटी, बिकॉज हिंदुस्तान इज ऑल अबाउट ट्रेडिशन एंड एलिगेंस, फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स, इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोलकी कलेक्शंस, एवरी पीस is crafted to celebrate the beauty we call life and of course your special moments that come along. Welcoming you to the new location, 13145 suite 220 main street in Frisco, Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967.

0: Another epic film from the 90s. This was Urmila Matondkar, Aamir Khan, Udit Narayan ki awaz, and this was Rangeela. Kya kare, kya na kare. Beautiful track. And if you are planning to think ke is weekend pe ko kya kiya jaye, to Pakistan Society North Texas is bringing you their spectacular celebration, which is the Pakistan Society of North Texas presents Qaid Mela, which is on 2026, a celebration of heritage, culture, and community. Enjoy live music, food, shopping, and cultural festivities, and family fun for all ages. Saturday, 22 August. को होगा जी ये इवेंट फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM साउथ फोर्क रैंच. इट्स अ वंडरफुल प्लेस. डोर्स ओपन एट 2 PM एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, एंट्री एंड पार्किंग दोनों बिल्कुल फ्री है. जी हाँ, एंट्री और पार्किंग दोनों एब्सोल्युटली फ्री. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मनी स्पेंडिंग फॉर पार्किंग एंड फॉर योर एंट्री. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स, कम टुगेदर टू सेलिब्रेट Qaid Mela 2026. मीडिया पार्टनर इज फन एशिया रेडियो. छोटा सा ब्रेक अभी आया, लास्ट सेगमेंट कमिंग अप.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
2: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को.
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
4: Fear not, we have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 PM to 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Hello Texas परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe.

तुमको पाया तो पाई जिंदगी DFW. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग ड्राइव टाइम शो. इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय अडियोस गुड नाइट स्लीप वेल बट आई एम गोना लेट यू नो दैट सोनू निगम द सोलफुल वॉइस इज कमिंग विद हिज शो व्हिच इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. और जब सोनू निगम हो तो आपको पता है भाई कि एंटरटेनमेंट इज गोना बी फुल ऑन प्लस द वाइब्स आर गोना बी फुल ऑन एनर्जेटिक एंड द माहौल इज गोना बी वेरी वेरी सोलफुल. दैट इज द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. दिस इज द एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन व्हिच विल नेवर बी द सेम फॉर यू गाइस. इफ यू never been to a Sonu Nigam concert before, I recommend that you attend this concert. Saturday, September 26th, yani ki ek mahina aur hai, 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live for you. Tickets available at Ticketmaster.com. For more information, call 855-360-SHOWS. That's 855-360-SHOWS. Exclusive media partner is Fun Asia Radio. Dua mein mujhe yaad rakhiyega ji. I will do the same for you. A little unwell today, so I'm sorry if I couldn't be at par with what I usually do, but duao mein mujhe yaad rakhiye. I'll recover soon, and if God gives me another day, I'll be here tomorrow to entertain you. After me is going to be Ippy the Hippie entertaining you from 7 to 10. With that, it is good night, bye bye, adios.